0: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधु और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: मुझे एक बात बताओ, अगर रातों रात ही सब कुछ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Anshu with you. एक बार फिर से खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत हमारी जिंदगी में हो चुकी है और इस नई मॉर्निंग में नई एनर्जी के साथ एक सिंपल सा नया थॉट बस आज के दिन के नाम. यार कभी नोटिस किया है कि लाइफ ना कभी भी ओवरनाइट चेंज नहीं होती. जिम का रिजल्ट हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश हो, मैजिक कभी भी एक दिन में नहीं होता. यार मैजिक होता है रोज कोशिश करने में, थोड़ा सा ज्यादा ट्राई करना, थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा ये कहना कि कुछ भी हो कम ही सही लेकिन आज भी मैं कोशिश जरूर करूंगा. एंड सक्सेस जो है ना उस इंसान को हासिल नहीं होती जो कभी फेल ही ना हुआ. सक्सेस तो उसे मिलती है जो रोज लगातार लगा रहा. वो कहते हैं ना बूंद बूंद से समंदर बनता है, छोटे छोटे कदमों से रास्ता बनता है और थोड़ा मुश्किल जरूर लगे पर याद रखना लगातार कोशिश करने से सफर मुकम्मल जरूर होता है. तो बस थोड़ी सी नई कोशिश आज एक बार फिर से करते हैं और इसी थॉट के साथ मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत करते हैं. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La virpa, la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई, संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे? आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे। लाठी वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं। आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ के लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ, हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार। तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी है, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नहीं, नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था। कहाँ पे? बहुत दूर था सर लाठी।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई।
2: बहुत दूर था सर
3: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए। तीन लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है?
3: मैं नहीं,
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
3: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार। क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई। जल्दी आ जाओ भाई यार।
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप। हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है? मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है।
2: वो
3: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
4: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ये वाली जंग जो है ना आपके घर भी जरूर हुई होगी।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Anshu with you. Well, समझ की अगर हम बात करें बचपन के दिनों को सोचने की कोशिश करें तो भाई दो बातों को लेकर ना घर पे लड़ाई अक्सर हुआ करती थी। देखो सबसे पहली बात कि ठंडा पानी, जिसने भी इसकी बॉटल खत्म की बॉटल वही भर के रखेगा। और हम इतने नालायक हुआ करते थे, कितनी भी प्यास क्यों ना हो इंटेंशनली थोड़ा सा पानी फ्रिज के अंदर उस बॉटल पे छोड़ देते थे ताकि हमें भरना ना पड़े। एंड जंग नंबर टू, मतलब कूलर, जो आखिरी में सोकर उठा भैया कूलर में पानी जो है वही भरेगा। बस इस कंपटीशन के चलते हम जो है ना थोड़ा जल्दी उठते थे, मम्मी पापा का काम भी बन जाता था कि भैया बच्चे जो है सारा जल्दी उठ गए। क्या दिन थे यार। आज की डेट में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर कतर में हमारे लिए सब कुछ कितना फीजिबल एंड एक्सेसिबल है। हर किसी के घर पे एसी है, पानी भरने की वो जद्दोजहद ही नहीं। एंड अगर ठंडे पानी की बात करें, वाटर डिस्पेंसर में ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह का ठंडा पानी आता है कि भैया इसके लिए भी कोई लड़ाई झगड़ा जो है हमारे घरों में तो होता नहीं। चलिए लेकिन झगड़े की बात करें तो इस वक्त वो सूरज चाचू से हमारा जरूर चल रहा है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: कोहराम जो मचाया हुआ है उन्होंने हमारी जिंदगी में। टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी अराउंड 43। हवाएं भी तेज गति में चलती रहेंगी। मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 30। खूब ख्याल रखें, डस्ट से खुद को बचा के रखें एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कलेजे के ठंडक के लिए सुनते रहे मेरी आवाज ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हार्ड बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813। जनम

0: तो बस डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर ही लें।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो गर्मी अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इसके साथ कतर का मरीन सीजन भी फुल स्विंग में वापस आ चुका है और अब बीचेस पर फिर से सब कुछ लाइवली होने वाला है। डाइवर्स आर रेडी, स्विमर्स आर रेडी और हम जैसे लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं जो शाम को समंदर के पास बैठकर बस हवा को फील करना चाहते हैं। वैसे एक बात बहुत सारे लोग जानते हैं कि कतर के समंदर में सिर्फ फिश और कोरल ही नहीं, यहाँ कुछ अंडर वाटर स्पॉट्स पर ओल्ड पर्ल डाइविंग रूट्स के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं। देखो यार, ऑयल एंड स्काईस्केपर्स के पहले कतर की इकोनॉमी पर्ल्स पर चलती थी। डाइवर्स घंटों तक समंदर में जाकर मोती ढूंढा करते थे एंड आज भी कोई ना कोई उसका ट्रेस उपलब्ध है, यानी कि मौजूद है। सो टेक्निकली कतर का समंदर सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि हिस्ट्री को भी छुपाए बैठा है। भाई समंदर की लहरें भी क्या कमाल करती हैं, किनारों से टकरा कर भी सफर जारी रखती हैं। शायद जिंदगी भी कुछ इनके जैसी ही लगती है, हर दफा रुक कर भी हिम्मत से आगे बढ़ती। वेल, मरीन सीजन को एंजॉय करिए बट रिस्पॉन्सिबली। हाइड्रेशन, सेफ्टी चेक्स, प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली ड्यूरिंग डाइविंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ एक्साइटिंग सफर पे निकले तो मुझे साथ लेके जाना, मजा आए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station. 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची फ्रेश माल,
1: स्वैग स्टाइल और बोल्ड एनर्जी के साथ सुनो लिपस्टिक।

0: इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखिए क्वीन तो आप है, जरा इस वक्त ये बात आपको महसूस भी करा दें।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जब तक रानी को वो रानी की तरह महसूस ना कराओ तब तक बात कैसे बने। अगर जिंदगी की सबसे खूबसूरत रानी की हम बात करें तो वो होती है हमारी माँ। यार हमारी जिंदगी को जिसने पूरी तरह से राजा की तरह बनाया वो हमारी रानी महारानी ना हो तो फिर क्या ही हो। तो चलिए जी, जितनी भी मॉमीज उस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, या आपकी वाइफ एक प्यारी सी मॉमी है, आपकी मम्मी खुद एक बहुत ही प्यारी सी मॉमी है, तो मिर्ची उनके लिए लेकर आया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ना ही वो सिर्फ राइज एंड शाइन कर सकती हैं बल्कि अपने अंदर की उस क्वीन को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकती हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5। बिल्कुल, इसकी एंट्रीज जो है अब हम कर रहे हैं एक्सेप्ट। अगर आपको लगता है कि इस पेजेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है, उस रेड कार्पेट में आपको वॉक करना है, बहुत सारी खूबसूरत सी यादें अपने लिए संजोनी है, बनानी है, अपने बच्चे के साथ मिलकर एक खास इवेंट का हिस्सा बनना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। फटाफट से एंट्रीज के लिए आपको एक ही काम करना होगा, एक वीडियो बनाना है, 1 मिनट का रील। इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, एक फनी वीडियो हो सकता है, कंपाइलेशन ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज हो सकता है, डांस, ड्रामा, पोएट्री, व्हाट एवर यू लाइक। बस ये वीडियो जो है आपके और आपके बच्चे के खूबसूरत बॉन्ड को डिपिक्ट करना चाहिए और बस हमें भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000-1896। अगर आप सेलेक्ट हुए तो ऑडिशंस पे आपको बुलाया जाएगा एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो पेजेंट यानी कि मेन ऑन ग्राउंड इवेंट में आपको ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मेमोरीज बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि इसके अलावा ताज भी आपका इंतजार कर रहा है। फटाफट से एंट्रीज भेजें। मीनवाइल स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ।
1: देखिए मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
0: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खटखट,
5: कौन है?
4: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
4: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खटखट, हू दैट?
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: या लेजर के लिए सही, फन के लिए सही, लेकिन ये खेल ऐसा है जो हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक बार ही सही लेकिन जरूर खेला है।
1: मिर्ची अंशु
0: Well, I'm talking about badminton. Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. याद है स्कूल का वो PT पीरियड या घर आने के बाद कॉलोनी में बच्चों के साथ भाई बैडमिंटन खेलते हैं और वो एक शटल जो है ना जाने कितने महीनों तक हम जो है बस चला ही लेते थे, 5 रुपए वाली शटल। वेल, अगर आज भारत को देखने की कोशिश करें तो बैडमिंटन की जर्नी जो है ये किसी फिल्म से कम नहीं है। एंड इंडिया के शटलर्स वर्ल्ड स्टेज पर हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। From Prakash Padukone to Pulela Gopichand, then the golden era of Saina Nehwal and PV Sindhu, and आज की डेट में पूरी तरह से एक नई जनरेशन आ चुकी है। And इस वक्त एक नाम जो खूब बोलबाला मचा ही रहा है वो है सिर्फ 18 साल की लड़की, and I'm talking about Unnati Hooda. Now at just 18, she has already broken into the world top 20 rankings, becoming only the third Indian women's single player in history after Saina and Sindhu to do that. लेकिन बात इतनी है, उन्नति की उन्नति तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करें तो बैडमिंटन में और भी ज्यादा डेप्थ है। चाहे आप लक्ष्य सेन की बात करें, स्वस्तिक चिराग, आयुष शेट्टी, तन्वी शर्मा, भाई ये सारे के सारे नाम ऐसे हैं जो भारत के नाम अगला ओलंपिक मेडल लाने की पूरी तैयारी कर ही रहे। लेकिन यार सबसे खास बात यह है कि इंडिया जो है इस वक्त पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहा है 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को न्यू दिल्ली में होस्ट करने का। मतलब दुनिया का बिगेस्ट बैडमिंटन स्टेज जो है ना अब इंडिया में होने वाला है। एक जमाना था जब चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया इसे डेकेड्स तक डोमिनेट कर रहे थे और अब भारत जो है बराबर की टक्कर दे रहा है। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
2: टू टू जा फोर.
3: वेट सर, वेट.
2: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
3: सर यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं.
3: सर आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं?
3: सर वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है. सर पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: यार ये बात तो तय है कि अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मुझे अपने दोस्तों के साथ वो स्पेन रोड ट्रिप में जरूर जाना है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You are listening to Mirchi Mornings and this is Aryanshu with you. ये बात आप भी अग्री करेंगे कि पिक्चरों ने, फिल्मों ने हमारी जिंदगी में क्या गजब कमाल का रोल निभाया है। कई फिल्मों ने हमें रुलाया, कईयों ने हमें हंसाया, कईयों ने मोहब्बत करना सिखाया, तो कईयों ने टूटे हुए दिल को फिर से कैसे जोड़ते हैं ये बात सिखाई, कईयों ने हमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन से पूरी तरह से भर दिया, तो कईयों ने रिश्तों की इज्जत करना सिखाई। या लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसने सही मायने में मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, तो वो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए इस फिल्म की डिटेल्स तो आप में से कईयों को बताऊंगी, लेकिन इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इस वक्त मैं आपके बीच पेश करूं। आपको वो याद है स्पेन रोड ट्रिप, वो दोस्ती, वो लाइफ लेसन, स्काई डाइविंग, टोमैटिना, एवरीथिंग। आपको मालूम है इस फिल्म के रिलीज के बाद टूरिज्म जो है इंडिया से स्पेन के लिए कुछ इस तरह से बढ़ा कि स्पेन टूरिज्म बोर्ड ने एक्चुअली इस बात को एक्नॉलेज किया कि इस फिल्म के इम्पैक्ट की वजह से इंडियन सब ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए स्पेन आने लगे। इमेजिन, अ बॉलीवुड फिल्म लिटरली चेंज ट्रैवल ट्रेंड्स। Now people suddenly wanted road trips, adventure sports, bachelor trips, solo traveling. तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये एक फिल्म नहीं थी भाई, इसने एक entire generation का पूरा mindset बदल दिया। अब देखिए, इसके पहले हमारे लिए सक्सेस का मतलब होता था जॉब एंड स्टेबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के बाद लोगों ने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना शुरू किया। और वैसे यही एक्सपीरियंस हुआ था दिल चाहता है के बाद, जब लोगों ने गोवा को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखना शुरू किया। आप मुझे बताएं कौन सी फिल्म ने आपको हाईली इन्फ्लुएंस किया। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: जानो, ऐसे ना यूं देखो जानो।
1: मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई हेलो शॉप्स Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
1: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao, profit aayega.
0: Relative se advice slow to kehte hain.
2: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो
3: भाई क्या कर रहा है तू जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची टेक योर पार्टनर विद अस नाउ योर बिजनेस विल गो वाओ कॉल नाउ 7070 7687

0: यार एक बात बताना, कभी सब्जी मंडी में जाकर 5 रुपए की धनिया के साथ 2 मिर्चा फ्री में लायो?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. यार क्या कमाल इन गजब के दिन हुआ करते थे जब बचपन के दिनों में हम अपने शहर की लोकल सब्जी मंडी जाते थे. एंड भाई वहाँ पे सबसे मजा तो ये आता था कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो हम लाते थे लेकिन जो मोल भाव कर कुछ ना कुछ फ्री में उठा लिया करते थे. अलग ही दिन यार. लेकिन आज अगर दोहा की बात करें तो एक वक्त था जब कतर को देख कर लोग कहते थे डेजर्ट में फार्मिंग इम्पॉसिबल. और आज वही कतर अपनी लोकल फार्म्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड सीजनल मार्केट्स के थ्रू एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हर जगह बन ही चुका है. इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके बीच पेश करना चाहूंगी कि कतर के सीजनल लोकल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स की अगर हम बात करें जैसे अल शिहानिया, अल वक्रा, अल शमाल, अल खोर एंड अल तकीरा यार्ड्स, ये मई के एंड मोस्टली 23rd ऑफ मई तक बंद होने वाले हैं क्योंकि एग्रीकल्चरल सीजन जो है वो इस वक्त रैप अप हो रहा है. एंड ऑनेस्टली यार इन मार्केट्स ने हमें सब सब्जी खरीदने की जगह नहीं दी बल्कि एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया, वो सब्जी मंडी वाला. अब वो बात अलग है कि 2 मिर्चे जो है आज तक हमें यहाँ पे कभी मुफ्त में नहीं मिले. वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं, अगर आप कतर को देखने की कोशिश करेंगे तो आज के डेट में 100 से ज्यादा लोकल फार्म्स एक्टिवली सीजनल प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग जैसी एडवांस्ड मेथड्स यूज किए जाते हैं जहां बिना ट्रेडिशनल सॉइल के वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है. मतलब डेजर्ट कंट्री ने टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन के साथ फार्मिंग को लिटरली रीडिफाइन कर ही दिया. चलिए जी, सीजनल याद ना सही लेकिन हमारे होलसेल मार्केट्स तो आज भी हमारा साथ देंगे. जैसे अल सहिलिया सेंट्रल मार्केट जो कि कतर का सबसे बड़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल हब माना जाता है. एंड साथ ही सलाल सेंट्रल मार्केट, अल वक्रा मार्केट तो भाई हमारा अड्डा. कभी आओ तो बताना, मुलाकात होगी. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: औरों के लिए तो बहुत जी लिया, अब जरा खुद के लिए भी जी ले।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में अगर एक ऐसे शख्स की कहानी बताने की कोशिश करूं जिसने हमेशा खुद से पहले औरों के बारे में सोचा, खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने घर वालों के बारे में सोचा, तो वो है हमारी माँ। यार चाहे खुद कितनी भी भूखी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा पेट भर जाए ना तो उन्हें जो है तसल्ली और खुशी मिल ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, लेकिन हम जो है अगर सुकून एंड चैन की नींद सो लेना तो उनकी नींद जो है वो हो ही जाती थी। खुद जो है कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हम जो है ज़रा सा मुस्कुरा देना तो उनका दिन जो है वो बन ही जाता था। जिस माँ ने इतना कुछ किया, क्यों ना अब हम उसके लिए कुछ कर लें। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेशल इवेंट, दैट इज मिर्ची मॉमी अवार्ड सीजन 5, जो एक बार फिर से हमारी जिंदगी में आ चुका है। देखिए, बात इतनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी मॉमी जो है एक सुपर मॉमी है, आप खुद जो है एक सुपर मॉमी है, या आपकी वाइफ एक बड़ी ही प्यारी सी मॉमी है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, फटाफट से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने की बारी आ गई है, इस रेड कार्पेट पर चलने की बारी आ गई है, इस इवेंट में बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाने की बारी हो गई है। एंट्री के लिए एक ही काम करना है, फटाफट से एक मिनट का रील बनाना है आपको अपने बच्चे के साथ, दैट डिपिक्स अ ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू बोथ शेयर, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000186। रील में होना क्या चाहिए, कुछ भी यार, कोई फनी रील बनाए, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, जो आपको पसंद है, एंड बस हमें भेज दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए, ऑडिशन पे बुलाया जाएगा, ऑडिशन में अगर सेलेक्ट हुए तो बस पेजेंट का हिस्सा आप जो है अपने बच्चे के साथ जरूर बनेंगे, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000186, वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज, डेडलाइन जो है बस इस थर्सडे तक ही है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: भट्ट
5: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
4: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खट खट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: अच्छा सुनो, बचपन के दिनों में कभी जानबूझकर घूमने की कोशिश की है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार, हमने ना ऐसी हरकत की है, बड़ा मजा आता है. वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. यार, इस वक्त अगर अपने बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करूं तो सीधा अगर कोई एक्सपीरियंस याद आता है तो वो है नानी का घर. गर्मी का दिन, जहां मामा के बच्चे, मासी के बच्चे, हम सब एक साथ मिलकर क्या खुरापाती हरकतें किया करते थे. हम सब की उम्र जो है ना ऑलमोस्ट सेम, हम उम्र. अब ऐसी टोली जब घर के बड़ों के साथ कहीं बाहर निकल जाए तो कुछ खास प्लानिंग ना हो तो फिर क्या ही हो. एंड हमारा प्लान जो है ना बड़ा कमाल होता था कि भाई हर किसी ने अलग अलग जगह जाके घूम जाना है, स्पेशली अगर हम किसी फेयर में. अब ऐसा क्यों, हम जो है किसी दुकान में जाते थे, जोर जोर से रोने लगते थे कि हमारे मम्मी पापा जो है ना गुम गए. अब दुकान वाले भैया इतने उदार होते थे, ना ही सिर्फ हमें प्यार से बिठाते थे, पानी पिलाते थे, बल्कि अगर कुछ दुकान में अच्छे टॉयज हैं तो हमें फ्री में दिया करते थे. कुछ अच्छा खाने पीने का सामान है वो भी मुफ्त में मिलता था. एंड हाँ, इसके चलते हमारी लॉटरी एंड पार्टी जो है ना वो बस हो ही जाती थी. लेकिन ना यार, कतर के बच्चों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कतर ने इस वक्त लॉन्च किया है किड्स गो कैंपेन, जिसके चलते 12 साल से कम उम्र के बच्चे कतर में हो रहे बहुत सारे एक्टिवेशंस को समर्स के दौरान ना ही सिर्फ मुफ्त में एंजॉय कर पाएंगे, इनफैक्ट अगर डाइनिंग की बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें तो उनका मजा भी उठा पाएंगे. लेकिन हाँ, माँ बाप को अपनी टिकट खरीदनी होगी. ऐसा नहीं बच्चों के साथ हम भी मुफ्त, थोड़ा तो पैसा खर्च करो, जेब ढीली करो. किड्स गो कैंपेन के सारे डिटेल्स जानने के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करते रहिए एंड वो सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु. Enjoy.
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Pepermilci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है, अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हाँ जी, तो बस तैयारी शुरू कर ही ले, मौका भी है और दस्तूर भी। वेल, एक्सचेंज रेट्स जब इतने कमाल के हो तो फटाफट से पैसे भेजने की तैयारी जो है वो शुरू कर ही देनी चाहिए। एंड आज तो मौका एंड दस्तूर दोनों है, अकाउंट में पैसे है नहीं, ये आप डिसाइड कर ले। हैविंग सेड दैट, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.31, इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टका 33.65, नेपाली रुपीज 42.02, लंकन रुपीज 90.27। तो आई पी मनी आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाने की कोशिश कर ही रहा है, आप जो है ट्रांसफर कर अपनी जिंदगी में खुशियों को और बढ़ाई दें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी बातें हमारे दिल के हाल को बहुत अच्छी तरह से बयां कर ही जाती हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: हे वेलकम बैक, दिस इज आर्यांशु विद यू। अगर एहसासों की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत एहसास अगर हमारी जिंदगी में कुछ है तो वो है प्यार। और प्यार जो है ना, इंसान को किसी से भी हो सकता है, खुद से, अपने किसी पार्टनर से, अपने बच्चे से, अपने दोस्त से, अपने माता पिता से, कोई भी चीज़ जो आपके बेहद करीब हो। एंड पता है क्या, इसे एक्सप्रेस करना हमेशा ग्रैंड जेस्चर्स को डिमांड नहीं करता। छोटी सी बातें, किसी को याद रहे कि आपको आपकी चाय कैसी पसंद है, घर पहुंचने के बाद कोई आपसे बस यही पूछ ले सेफली पहुंच गए ना। ये जो है काफी लाउड नहीं होता लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। देखो, वक्त बदलता है, लोग जो है बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, जो आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं ना, वो ऑर्डिनरी डेज में भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील कराना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंड इसी पे मैंने कुछ तो लिखा है, सुनाती हूँ। तुम्हारी याद में कुछ इस तरह खो जाते हैं कि हर तरफ बस तुम ही तुम नजर आते हो। ये मोहब्बत भी कितनी खूबसूरत चीज है कि दूर रहकर भी लोग बस दिल में बस ही जाते हैं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Ochanati kuri.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखिए झाड़ू चप्पल बेलन, इसका स्किल तो बहुत दिखा दिया, अब जरा क्वीन की तरह रैंप में वॉक कर अपना अगला स्किल दिखा ही दे।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. सच कहूँ, मम्मी जो होती है ना, ये सर्व गुण संपन्न होती है, जहाँ पर एक तरफ झाड़ू बेलन चप्पल के साथ इसे रौद्र रूप धारण करना आता है, तो वहीं दूसरी तरफ रैंप में क्वीन की तरह वॉक कर वो नजाकत कैसे दिखाना है ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। बस इसीलिए तो हर एक मॉमी होती है सुपर मॉमी। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी भी बस सुपर मॉमी है, तो अब मिर्ची मॉमी बनने का वक्त जो है वो आ ही चला है। वेल, मिर्ची मॉमी is back with its biggest and boldest edition. Absolutely, we are talking about edition 5. And agar aapko lagta hai Mirchi ke sabse khoobsurat event ka aapko hissa banna hai, to what are you waiting for? Fatafat se entries bhejne ki taiyari aap kar hi le. Aapko bhejna hoga ek video, 1 minute reel that will basically depict the beautiful bond that you carry with your child. It could be anything. Any funny video, compilation of beautiful memories, dance, drama, music, poetry, jo bhi aapko pasand hai. Aapke aur aapke bachche ka bond jo hai us video mein bahut achi tarah se depict hona chahiye. Phir kya hai? Agar aap select hue, to aapko auditions ke liye bulaya jayega. And ऑडिशंस में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स फाइनली पहुंच जाएंगे ग्रैंड फिनाले में। वो रैंप वॉक होगा, वो रेड कार्पेट होगा, वो खूबसूरत सी मेमोरीज होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। और उसके बाद फाइनली एक मॉमी बनेगी, मिर्ची मॉमी यानी कि सुपर मॉमी। एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। 5000 1896 एंट्रीज भेजने का लास्ट दिन है थर्सडे। फटाफट से पार्टिसिपेट करें एंड बस मिर्ची के प्लेटफॉर्म में अपने हुनर को दिखाने के लिए तैयार हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके

0: हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: هالة كيف الحال؟
1: مرتي أنشو مرتي أنشو مرتي أنشو مرتي أنشو.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. बस क्या हाल चाल, यही जानने की मैंने कोशिश की. वाले एक बात बताऊं, हाल जो है बड़ा कमाल समर्स आपका कतर में होने वाला है. देखिए वो दिन जो है और वो दौर जो है पीछे ही छूट चुका, जब गर्मी के दिनों में ऐसा लगता था कि भैया एसी ऑन करो एंड घर के अंदर बैठो, कब ये मौसम जो है खत्म हो. इस वक्त कतर जो है पूरी तरह से समर की डेफिनेशन को चेंज करने में लग चुका है. एंड साथ ही कुछ ऐसे खास एक्सपीरियंसेस आएंगे जो गर्मी में आपको ठंडी का एहसास है ना 101% देंगे, बिकॉज समर इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेलिब्रेटरी दिस ईयर. जरा इमेजिन करें, अगर मैं बोलूं माइनक्राफ्ट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कतर टॉय फेस्टिवल, फंटाना वाटर सर्कस, लाइव कॉन्सर्ट्स, लग्जरी स्टेकेशंस, वाटर पार्क्स, फैमिली एंटरटेनमेंट, शॉपिंग फेस्टिवल्स, इंडोर एक्सपीरियंसेस, एंड द लिस्ट गोज ऑन. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब में अंशु का साथ. तो बताएं समर्स जो है आपके लिए कमाल ना बने तो क्या ही बने. एंड इस बार कतर में बहुत कुछ लाइंड अप है जो अगले 3 से 4 महीने आपकी जिंदगी में ना सुख चैन शांति के अलावा ढेर सारा थ्रिल भी है बस ऐड ही करने वाला है. भैया कतर जो है कहीं ना कहीं नानी की याद दिला रहा है यार, बचपन के वो दिन, नानी का घर, हर साल की आइटिनरी फिक्स. हाँ, कोई डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अड्डा जो है फिक्स होता था. गर्मी की छुट्टियां जो है नानी के घर ही बीतेंगी एंड बड़ी कमाल तरह से बीतेंगी. याद आया नानी के घर का कोई एक्सपीरियंस याद है, शेयर जरूर करना 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. भैया हम तो हाला समर 2026 का भी इंतजार कर ही रहे. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो।
1: हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
4: हाँ जी सर।
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड।
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
2: एक सेकंड रुकिए।
4: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी।
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए। आए।
4: क्या हो गया?
2: आए, गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: I was so tense, I thought, what happened?
5: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100813।
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखो एक ही बात कहना चाहूंगी, सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बाद में बनाना, उसके पहले जरा इसे तो बना लो।
1: मिर्ची अंशु
0: कतर की गर्मियों की बात करें और इसे बेस्ट फ्रेंड ना बनाए तो फिर किसे ही बनाए? अरे इन्हें आपने पहचाना नहीं, बस यही
2: पानी पानी हो गए।
0: हाँ जी, कतर की गर्मी एंड पानी की वो ग्लास उस वक्त आपकी जिंदगी में ना आपके बेस्टेस्ट बड़ी होने चाहिए। क्या आपको मालूम है कि आपकी बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेटेड पहले होती है और प्यास जो है आपको बाद में लगती है। बस उसी तरह जिस तरह से आपकी बीवी गुस्सा पहले होती है, रिएक्ट बाद में करती है। तो इससे पहले की बीवी रिएक्ट करे उसके मन की बात समझ लो और बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो उसके पहले पानी जो है वो पी लो। लेकिन कई बार ये होता है, हमें लगता है कि भाई हम तो बाहर गए नहीं, अंदर ही अंदर बैठे थे, उसके बाद भी हमें थकान क्यों लग रही है, यू नो हम जो है लेथार्जिक क्यों फील कर रहे हैं। भाई सब इतना समझाएं, एसी में बैठे बैठे भी आपकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट होती है। इनफैक्ट कई बार ये होता है, हमें लगता है लैक ऑफ स्लीप जो है बहुत सारी इश्यूज का जड़ है, लेकिन ना पानी की कमी भी बहुत बड़ा जड़ जो है ना वो हो ही सकती है। तो बस खुद को हाइड्रेटेड रखें, अच्छी तरह से रखें। एंड एक और टिप दे रही हूं, अगर आपको लगे कि डिहाइड्रेशन जरा सा भी महसूस हो रहा है तो पानी में जरा नींबू का रस हो, हल्का सा नमक हो, हल्का सा शक्कर, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, इसे जरूर ऐड करें। इनफैक्ट कोकोनट वाटर कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग समर्स। तो ये थी आज की हेल्थ टिप। मुझे थैंक यू बोले, आपकी जिंदगी में आपकी सेहत को अच्छा करने का काम क्यों, खुशी तो मैं लाती रहती हूँ। 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अरे अरे, किचन और ऑफिस नहीं बल्कि इस वक्त रेड कार्पेट और क्राउन कर रहा है आपका इंतजार।
1: मिर्ची अंशु।
0: Welcome back. You're listening to Mirchi Mornings, and this is RJ Anshu with you. To all the wonderful mommies who are connected with me at the moment, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि इस वक्त बेल एंड पाटा चकला और फाइल्स नहीं बल्कि क्राउन और रेड कार्पेट आपका इंतजार कर रहे हैं. बिकॉज Mirchi Mommy Award Season 5 is back and it is going to be the biggest and boldest edition until now. What are you waiting for? फटाफट से एक मिनट की रील आपको बनानी है अपने बच्चे के साथ और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896. एंड अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको मिलेगा मौका कि आप ग्रैंड फिनाले का हिस्सा बन सकें और इस मैजिकल मोमेंट को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में शामिल कर सकें. सो फटाफट से एंट्रीज भेजिए, थर्सडे के अंदर अंदर ही भेजनी. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु. एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.

0: अजी जागते रहो, ये तो अक्सर तुम्हारे चौकीदार भैया चिल्लाया करते थे। भागते रहो, ये किसने कह दिया तुम्हें?
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back, you're listening to Mirchi Mornings and this is Aadyan Show with you. यार कभी जिंदगी में ऐसा फील हुआ है कि हम सपना बहुत ज्यादा जल्दी में, हर वक्त एक नया टारगेट, नया गोल, नया अचीवमेंट। भाई कभी कभी ना रुकना भी प्रोग्रेस ही होता है, यू नो, हैविंग दैट पीस, स्लीपिंग कामली, लाफिंग जेन्युइनली, ये सारी चीजें भी ना सक्सेस के सबसे बड़े पैमाने में आती है। एंड सच कहूँ, अगर एक दिन खुद को राहत दे दी, सुकून से चैन ले लिया या सांस ले ली, तो समझ जाओ वो दिन जो है ना तुम्हारा सबसे ज्यादा मुकम्मल हुआ। वो कहते हैं ना, जिंदगी को थोड़ा आसान तो होने दो, सुबह को जरा आराम से होने दो, हर खुशी तुरंत मिल जाए ये जरूरी तो नहीं, कुछ सपनों को थोड़ा वक्त तो होने दो। तो बस टेक इट ईजी, टेक इट लाइटली, दिन को बहुत अच्छे से मस्ती में खुश होकर बिताएं, साथ ही अपने लिए वो वक्त जरूर निकालें। अभी फिलहाल स्टेडियो टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट।
5: कौन है?
4: अज्जू।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हिट मशीन है ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आफ्टर डिलीवरिंग बैक टू बैक 100 करोड़ की हिट्स विद ड्रीम गर्ल 2 एंड थामा, आयुष्मान खुराना अब अपने कॉमेडी हिट रन को कंटिन्यू करने वाले हैं उनकी आज रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो दो के साथ। बाकी इस फिल्म में आयुष्मान के अलावा वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान भी नजर आ रही हैं। एंड अभी तक का जो भी ओवरव्यू आया है अबाउट द मूवी एक्चुअली इंडिकेट्स कि धीरे धीरे ही सही ये फिल्म भी हो सकता है 100 करोड़ क्लब में शामिल हो ही जाए। अब देखो आयुष्मान खुराना की फिल्मोग्राफी अगर देखें तो उनकी हर दूसरी फिल्म आज के डेट में हिट ही साबित हुई है एंड दैट इज द रीजन पति पत्नी और वो दो ये नाम सुनने के बावजूद, इनफिडेलिटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आने के बावजूद आई एम इंट्रीग्ड अबाउट इट, क्योंकि आयुष्मान ने तो एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई भी किया था कि यार ये फिल्म दिखने में भले ही शादी और अफेयर्स की कहानी लगे बट इट इज वे बियॉन्ड दैट। सो द डिसीजन इज योर्स कि आपको ये फिल्म थिएटर में जाके देखनी है या इसके OTT पे आने का इंतजार करना है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milciu.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burga, burga. La vieta la burga.
2: Milci, burga.
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
4: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
4: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये जवाब मैंने दिया. मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.

0: अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ब्लॉकबस्टर फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने अर्जुन रामपाल को एक एक्साइटिंग रोल ऑफर किया है, वो भी एक विलेन का। सो बेसिकली धुरंधर के बाद से अर्जुन रामपाल ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है एंड दस ही हैज बीन ऑफर्ड 6 crores फॉर दिस एक्ट। फिल्म का नाम है अर्जुन नागा, जिसमें उत्कर्ष शर्मा एज द प्रोटैगनिस्ट नजर आएंगे एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द फ्लोर्स दिस संडे यानी May 17th इन बॉम्बे। बाकी अर्जुन रामपाल इस ऑफर को लेंगे या नहीं वो पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म का नाम है, जिसमें वो एक सुपर हीरो दादाजी के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग एंड भाई 29th of May का इंतजार मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बच्चा अभी भी छुपा हुआ है ना, वो बहुत टाइम बाद किसी ट्रेलर को देख के ऐसे खुश हुआ है। बिकॉज दिस मूवी ब्लेंड्स childhood fantasy, family emotions, aliens and superhero chaos into a fresh big screen entertainer. तो देखते हैं हमारे इंडस्ट्री के फ्लाइंग जट के पापा जी कितना कमाल करते हैं। नेहा धूपिया और उनके हस्बैंड अंगद बेदी हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब नॉन फिक्शन सीरीज जिसका नाम है डबल डेट, जिसकी शुरुआत हुई है नेहा धूपिया के यूट्यूब चैनल पे। देखो सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, जहां सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस के साथ साथ फन गेम्स होंगे, कैंडिड मोमेंट्स होंगे एंड प्लेफुल चैलेंजेस भी होंगे, विच इज गोना हैपन नॉट जस्ट विद द कपल्स ऑफ द इंडस्ट्री बट सिस्टर्स, ब्रदर्स, वैसे वैसे कपल्स एज वेल। खैर अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, वे आ करवा दो जी।

0: गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भाई ये नहीं देखा तो क्या ही देखा।
1: OTT एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड यस, उस सीरीज की बात करना चाहती हूँ जिससे मैंने काफी ज्यादा रिलेट किया। आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन, जिसका सीजन 2 अभी हाल फिलहाल आया है। एंड माइंड यू, इस सीरीज के ड्रॉप होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको IMDb पे 9.4 की रेटिंग मिली है। मतलब आप सोचो, 10 में से 9 इंसान तो इसको अल्टीमेट लेवल पे पसंद कर ही रहा है। तो अगर ओवरव्यू दूं अबाउट द सीरीज, जैसा कि नाम बताता है, सपने वर्सेस एवरीवन, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोटैगनिस्ट्स हैं और उनके सपने हैं और उसके बीच में बहुत सारी ऊंच नीच होती है। और एक जो विलेन है इस सीरीज के, आए हाय हाय मामा बोले तो कुकरेजा, विच इज प्लेड बाय विजयंत कोहली। वेल, आई विल बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम इन अ व्हाइल। तो अगर आपको इस सीरीज के बारे में ओवरव्यू चाहिए, विजयंत कोहली एज एन एक्टर को जानना है और उनके साथ कुछ फन गेम का हिस्सा बनना है, देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे कुछ ही देर में यहीं पे मिलेंगी। मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Khat khat.
6: Kaun hai?
5: Ishant.
6: Ishant kaun?
5: Ishant Gadadhari Bhim, Ishant.
6: Khat khat, who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1.
8: Mirchi, it's hot.

0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
1: मिर्ची में ट्यून्ड इन हो आप। और जब से भाई ओटीटी आई है तब से तो कंटेंट को लेके जो खूबसूरत सी बारिश हम ऑडियंस के ऊपर होती है कि क्या ही बताऊं। और अब से कुछ दिनों पहले अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज आई, बेसिकली उस सीरीज का सेकंड सीजन आया। आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन। और आज इस सीरीज के ही विलेन साहब, बोले तो कुकरेजा जी, बोले तो मामा, इज इन द मिर्ची स्टूडियो हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मी। ही इज नन अदर देन विजयंत कोहली, हु इज मल्टी फेसेटेड एक्टर। इन्होंने अपने इमोशन से हमें रुलाया भी है, कभी हंसाया भी है, और इस सीरीज में पर्टिकुलरली ये काफी डरा रहे हैं। सो वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे मिर्ची स्टूडियो की हॉट सीट की हॉटनेस और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
2: थैंक यू श्रुति, थैंक यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है रुला देगी तो अभी शुरुआत में ही, मतलब इतने मल्टी फेसेटेड और जाने क्या क्या। एनीवेज हां, गुड गुड टू हियर यार, अच्छा लग रहा
1: है। वो आपकी जेनरोसिटी है कि आप बस ऐसे बोल रहे हो, नहीं तो पूरी दुनिया जान रही है आपके बहुत सारे चेहरे देख लिए हैं लोगों ने अभी तक।
2: पीपल आर बीइंग काइंड यार दिस टाइम अराउंड। आई मीन आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव सीन दिस साइड आल्सो, बिकॉज़ अभी तक जो हो रहा था वो स्वीट पापा, क्यूट मामा, प्यारे भैया, नोने से चाचू, पुकी अंकल, वो सब चल रहा था। तो अभी उसको ब्रेक करने का टाइम था, सो लकीली दिस थिंग केम इन एंड हो रहा है, मतलब कहीं कुछ ठीक ही हो रहा है लग रहा है।
1: सर ऑनेस्टली दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग कि ठीक ही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो अव्वल हो रहा है, सुपर से भी ऊपर हो रहा है, एंड जस्ट बवाल ही मचा रहे हैं आप। सो वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर अबाउट सपने वर्सेज एवरीवन एंड डेफिनेटली अबाउट हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। अभी के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर इस कॉन्वर्सेशन को वापस कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: महाभारत के कंस मामा को भी कंपटीशन दे रहे हैं ये।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चे पे ट्यून्ड इन हो आप एंड रिसेंटली सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 आया एंड उस सीरीज के अल्टीमेट लेवल के एक्टर दैट इज विजयंत कोहली सर, जिन्होंने मामा बोले तो कुकरेजा का रोल प्ले किया है, इज इन कॉन्वर्सेशन विद मी इन द मिर्ची स्टूडियो टूडे। तो सर, कैन यू प्लीज इलेबोरेट अबाउट दिस कैरेक्टर ऑफ कुकरेजा एज पर योर अंडरस्टैंडिंग?
3: Yeah, my understanding from day one was very clear when Amrish Verma, the writer director and the main lead of the show, Param aur Amrish lead kar rahe hain show. Amrish se meri meeting rakhwai gayi thi. TVF ne bola tha ki ek bari aapko milna hai Amrish ko jaake and script sunni hai. When this thing came to me through a wonderful casting director Navratan Mehta, unhone bola ek meeting aapki Amrish se rakhwani hai. Main chala gaya milne, mujhe laga 15 ya 20 minute ki meeting hogi. Wo meeting hi 2 ghante se upar chali gayi thi hamari, because it was kind of a first narration. So Amrish ne pehle din hi mere ko ek baat boli thi ki मामा डज नॉट हैव एनी शेड्स ऑफ ग्रे, मामा काला है, मामा इज ब्लैक, तो मतलब आप करोगे इसको? मैंने कहा यार मैं करूंगा, मैंने आज तक किया नहीं है ऐसा, बट दिस वॉज समथिंग विच डेफिनेटली वॉज पुलिंग मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, सो मेरे लिए अच्छा था। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है कि इमेज ब्रेकर बनेगा। उससे पहले एक या दो बार मैं नेगेटिव किया था, बट वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं इतना। जब ये आया मैंने किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ मतलब मेरे को थोड़ा सा अप्रिहेंशन था, बट आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल। स्क्रिप्ट पढ़ी तो फिर वो सारे अप्रिहेंशन दूर भाग गए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था यार काला क्या काला करेगा, मतलब कितना लोगों को मार लेगा, क्या किडनैपिंग कर लेगा, क्या कर लेगा। बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो मुझे लगा नहीं यार ये तो करना ही करना, यू जस्ट कैन नॉट, मैं छोड़ नहीं सकते इस चीज को।
0: एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डिसीजन आई मस्ट से, क्योंकि जिस हिसाब से आपने कुकरेजा को स्क्रीन पे अलाइव किया है इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो ये तैयारी कैसे की आपने इस कैरेक्टर की?
3: मैं घुस जाता हूँ सीन में यार, मेरी एक आदत है जब मेरे को लाइंस मिल जाती है एक बारी तो मैं घर से तैयार करके जाता हूँ, वैनिटी वैन में भी तैयारी करता हूँ। मेरी शुरू से एक आदत रही है कि अगर जो कैरेक्टर मेरे पास आता है मैं सबसे पहले उसका एक बैक स्टोरी बनाता हूँ कहीं ना कहीं, कि वो कैसा होगा, कुकरेजा का बेटा होगा, बेटी होगी, उसकी वाइफ होगी, वो कुकरेजा जो है वो कुकरेजा क्यों है। सो वो उसके अंदर था कि यार ये बिजनेस तो करता है बट है गुंडा, सो आई हैड टू पोर्ट्रे दैट कि मैं हूं पार्ट टाइम बिजनेसमैन और गुंडा फुल टाइम। सो वो सब चीजें अपने आप आती है जब आप तैयारी से सेट पे जाते हैं। प्लस डायरेक्टर को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, डायरेक्टर के पास एक स्क्रिप्ट जो है वो पिछले 3 साल से 2 साल से 1 साल से हो सकता है 6 साल से पड़ी होती है, तो उसको पता होता है उसका कुकरेजा कैसा होने वाला है। सो डायरेक्टर के तो इनपुट रहते ही रहते हैं, प्लस आपकी अपनी तैयारी बहुत काम आती है, उसमें हम ढील नहीं देनी चाहिए। मतलब टू ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स आल्सो आई ऑलवेज टेल देम कि हमेशा तैयारी करके सेट पे जाओ यार, अगर उसके बिना जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं वो दिखेगी स्क्रीन पे चीज की यार तैयारी किए बगैर आया हुआ।
0: वेरी वेल सेड। वैसे आपने जो तैयारी की थी वो अच्छे तरीके से हमें दोनों ही पार्ट्स ऑफ सीरीज में नजर आ रही है, तभी तो हर दूसरा इंसान आपका कायल होता जा रहा है। वेल आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर, जिन्होंने सपने वर्सेस एवरीवन में मामा का किरदार निभाया है, एके कुकरेजा, और इनसे बातचीत आगे जारी रहेगी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
4: Hey guys, this is Varun Dhawan. Wow, that goes wow.
5: Swag, style aur non-stop dancing ke liye taiyar ho jao.
4: Add it, turn it up and don't sit now. Just go wow.
5: Wow.
6: Say wow.

0: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। मिर्ची
1: हेलो
2: भाई संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
1: बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे आप?
1: जी बैठे थे।
2: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ बताओ। जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार, 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नाराज की कोई बात है, बताइए। हाँ बताओ।
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, मैं तो बहुत दूर था सर, लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे।
1: बहुत दूर था सर
2: भाई, इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
2: है? वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, 3 लाठियाँ रजिस्टर में चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है? मैं
2: नहीं
1: तो
2: नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियाँ मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई यार।
1: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
2: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई, इस बात समझ में नहीं आ रही। लाठी चार्ज हुआ था उसमें 3 लाठियाँ तुम्हारे नाम की है,
1: वो
2: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
3: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: प्रेजेंट में इतना धांसू काम कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात तो बनती है यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उंडे नो आप एंड आज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर जो सपने वर्सेस एवरीवन के विलेन बोले तो मामा बोले तो कुकरेजा बने हैं। सो सर बहुत सारी बातें आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स की तो होगी बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? आई एम पर्सनली वे टू एक्साइटेड टू नो अबाउट इट ऑल, प्लीज इलैबोरेट।
3: सो इफ आई एम अलाउड टू टॉक आई मीन आई विल टॉक अबाउट दोस जो अनाउंस हो चुके हैं। 22 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है मेरी सिस्टम, इट्स ऑन अमेजॉन प्राइम ओनली। सोनाक्षी लीड है, आशुतोष गवर्कर सर है, ज्योतिका है, मैं हूँ, बहुत अच्छी कास्ट है, उसमें नेगेटिव रोल है मेरा। देन देयर इज अनदर फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड अवारापन, अवारापन 2, इट्स अ ह्यूज फ्रेंचाइजी, आई एम
0: वेटिंग फॉर इट।
3: 14 अगस्त को वो रिलीज हो रही है, उसमें नेगेटिव पार्ट है, उसमें भी मेरा। देन देयर इज अ फैंटास्टिक स्टोरी कॉल्ड पारिवारिक मनोरंजन विद पंकज त्रिपाठी एंड आदित्य राव हैदरी, ब्रिजिंदर काला ने लिखी है फिल्म, अली अब्बास जफर ने प्रोड्यूस करी, मेरे दोस्त अली। आउट एंड आउट कॉमेडी रोल है मेरा, बिल्कुल ही कॉमिक है एकदम उसके अंदर। देन देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड लव लॉटरी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, देहरादून में सेट है, उसमें बहुत इमोशनल रोल है मेरा, अक्षय ओबेरॉय इज द लीड, अक्षय ओबेरॉय का मैं मेंटोर बना हूँ उसमें, आई रन अ कैफे इन देहरादून, नॉट रिवीलिंग मच। एक और फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, पार्ट छोटा है बट बड़ा इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग स्पिरिट विद प्रभास एंड तृप्ति एंड विवेक ओबेरॉय। तो या आई मीन दीज आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर लाइंड अप, अभी हैं काफी चीजें और भी हैं,
0: मतलब अभी ऑलरेडी 5-6 चीजें जो अनाउंस हो चुकी हैं वो आपने गिना दी एंड उसके आगे भी बहुत कुछ ऐसा आने वाला है जो अभी अनाउंस नहीं हुआ है एंड यू आर कीपिंग इट अंडर द कर्टन्स, बट यस आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर इट ऑल। वेल मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एक्टर विजयंत कोहली जिनसे अपनी बातचीत आगे कंटिन्यू रखूंगी बिकॉज वी आर गोना प्ले द बॉलीवुड चेन गेम विद हिम एज वेल, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Maika.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई, ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट।
12: जब

0: महाभारत के कंस मामा को कंपटीशन देने वाले से हो रही है बातचीत।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल, ही इज नन अदर देन विजयंत कोहली, जिन्होंने सपने वर्सेस एवरीवन में मामा बोले तो कुकरेजा का रोल प्ले किया है। एंड सर, एक चीज जो बहुत एडमेंटली उभर के बाहर आती है इन द सीरीज इज द जुगलबंदी, जो राइम सिचुएशन चल रहा होता है, तो हर सीन में ये देखने को मिला है। तो मैंने सोचा एक गेम तो इस पे भी बनता है यार। सो मैं आपको कुछ लाइनर मारूंगी, आपको वो लाइन्स कंप्लीट करनी है, बट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट दे राइम।
3: ओके,
0: सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज अंडी मंडी शंडी।
3: ओके, अंडी मंडी शंडी, मामा है बहुत घमंडी।
0: वो तो है। फॉर दैट यू हैव टू वॉच बोथ द सीजंस, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा।
3: मोहब्बत बहुत कम, गुस्सा थोड़ा थोड़ा।
0: गुड गुड, मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, मेरा मामा
3: हमेशा करे दंगा।
0: ओके, नेक्स्ट वन इज डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक।
3: जिमी जो पैसे कमाता है मुझे लगता है बिल्कुल फेक।
0: मतलब यहाँ इंटरव्यू में भी जिमी और मामा की रंजिशें बाहर आ रही हैं। एनीवे, ये गेम यहाँ खत्म तो हो गया, लेकिन एक और गेम बाकी है जिसमें हम चेक करेंगे कि भाई विजयंत कोहली, हु इज एन अल्टीमेट एक्टर, क्या वो अपनी इंडस्ट्री को भली भांति जानते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड, टिल द न्यू स्टेडियम, मिर्ची में हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot।
4: Khatkar
5: kaun hai?
4: Dave
5: Dave kaun?
4: The way you love me, I hai mar jawa।
5: Khatkar who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1 Mirchi It's Hot।

0: इंडस्ट्री में काम करने वाले इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से जानते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: आओ ना साथ मिलके इसका पता लगाते हैं, बिकॉज बाबू मोशा इट्स टाइम फॉर फाइंडिंग मिर्ची फिल्मची, बट दिस टाइम इनटू अ सेलिब्रिटी, बिकॉज आज आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर, एंड रिसेंटली उनकी सीरीज आई है सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2। एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन सर। बेसिकली मैं अपने शो पे हर दिन एक मिर्ची फिल्मची ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आई प्ले अ गेम विद द ऑडियंस और मैं उनसे बॉलीवुड का एक सवाल पूछती हूँ, उसका सही जवाब देने पे उनसे फर्दर लाइन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं।
3: ठीक है,
0: शैल वी स्टार्ट?
3: या श्योर।
0: ओके, रणबीर कपूर की वाइफ का नाम?
3: आलिया।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप होती हैं?
3: हाईवे।
0: हाईवे के मेल लीड का नाम?
3: रणदीप।
0: रणदीप हुड्डा की फर्स्ट बायोपिक कौन सी थी?
3: सरबजीत।
0: ग्रेट। सरबजीत में उनकी बहन का रोल किसने किया था?
3: ऐश्वर्या।
0: ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फर्स्ट फिल्म टुगेदर?
3: हम दिल दे चुके सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम के सेकंड एक्टर का नाम?
3: हाउ कैन आई फॉरगेट, हां अजय।
0: ग्रेट। अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो फोर सीटर बाइक चलाते हैं?
3: गोलमाल।
0: ओह, गोलमाल का कौन सा हीरो मुन्ना भाई MBBS में भी नजर आया है?
3: अरशद भाई।
0: अरशद वारसी की फिल्म जिसमें वो लॉयर बने थे?
3: जॉली LLB।
0: जॉली LLB 2 में कौन से हीरो थे?
3: अक्षय सर।
0: अक्षय कुमार की वाइफ इन गुड न्यूज?
3: गुड न्यूज मूवी करीना।
0: करीना की फिल्म जिसका डायलॉग है गुड लुक्स एंड गुड लुक्स?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: कहीं तो रुक जाओ सर। कभी खुशी कभी गम में अडॉप्टेड बेटा कौन बनाया?
3: ऋतिक।
0: फिर से
3: शाहरुख सर। शाहरुख सर, ऑफ कोर्स।
0: कोई नहीं, बट स्टिल यू आर दी ओजी मिर्ची फिल्मची, हम बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द मिर्ची स्टूडियो।
3: थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।
0: कुछ जो जाते जाते आप बोलना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए?
3: प्लीज वॉच सपने वर्सेस एवरीवन। देखो, बहुत सुंदर शो है, बहुत खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत मेहनत लगी हम लोगों की और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इट इज करेंटली 9.4 ऑन IMDb। जाओ IMDb पे उसको वोट करो, अगर अच्छा लगे, ना लगे तो मत करो, कोई बात नहीं, हो सकता है हमारे ही कुछ कमी रह गई हो। सीजन 1 जरूर देखो, वो YouTube पे था पहले, अभी वो प्राइम पे है तो बहुत लोगों से छूट गया है वो, तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी अच्छे से अगर आप सीजन 1 नहीं देखेंगे। आपको लगेगा 4 मिनट का रीकैप के देख के हम सीजन 2 वॉच कर लेते हैं, बिंज मार लेते हैं, तो नहीं होता है। सीजन 1 जरूर देखो, 6 घंटे का माल है, पता भी नहीं चलेगा, एक वीकेंड की बात है, निकाल दो।
0: ऑल राइट, तो लो भाई, मैंने और विजयंत सर ने आपके वीकेंड की प्लानिंग तो सेट कर दी है, बाकी तो समझदार को इशारा काफी होता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: की बात कह रही हूँ, सनस्क्रीन को अपना बेस्ट फ्रेंड इस वक्त बाद में बनाना, ये कोई और है, इसे पहले बना लो।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: बस इन्होंने जो हमारी जिंदगी में कोहराम मचाया ना, उसके चलते मुझे किसी और की याद आई है, एंड वो है पानी। मैं पानी पानी हो गई एब्सोल्युटली। देखिए आज के डेट में हम सब इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि घर निकलने से पहले हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हाँ सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करते हैं। लेकिन इतना कहना चाहूंगी, जहां पे वो जरूरी है, बेहद जरूरी है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें या कहीं भी बाहर निकलने की कोशिश करें, भाई पहले पानी पिए। दैट शुड बी योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड। हैविंग सेड दैट, आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें, सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 32। खूब ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, लेकिन कलेजन दिमाग के ठंडक के लिए सुनते रहे मेरी आवाज ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Yes.
4: Motor se bol rahe hain?
3: हाँ जी
4: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
3: ठीक है सर,
4: 5 सेकंड जल्दी।
5: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो,
4: प्लीज जल्दी बता दो।
3: हेलो
4: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो,
6: हाँ जी सर।
4: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड।
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर।
4: एक सेकंड रुकिए।
6: सर साइड में, लेफ्ट साइड में।
4: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
6: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
4: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए। ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं?
6: हाँ जी।
4: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
6: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
4: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
6: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
6: हाँ जी।
4: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
6: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
4: क्या करूँ?
6: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
4: एक सेकंड रुकिए।
6: क्या हो गया?
4: गाड़ी ठुक गई।
5: मैडम क्या नाम है आपका?
3: दिव्या।
5: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
3: I was so dense, I don't know what happened.
7: कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।

0: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM, Mirchi 1.
3: It's hot.
4: This is the future, man.

यार अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने अर्जुन रामपाल को एक एक्साइटिंग रोल ऑफर किया है, वो भी एक विलेन का। सो बेसिकली धुरंधर के बाद से अर्जुन रामपाल ने अपनी फीस को बढ़ा दिया है एंड दस ही हैज बीन ऑफर्ड 6 crores फॉर दिस एक्ट। फिल्म का नाम है अर्जुन नागा, जिसमें उत्कर्ष शर्मा एज द प्रोटैगनिस्ट नजर आएंगे एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द फ्लोर्स दिस संडे यानी May 17th इन बॉम्बे। बाकी अर्जुन रामपाल इस ऑफर को लेंगे या नहीं वो पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म का नाम है, जिसमें वो एक सुपर हीरो दादाजी के रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग एंड भाई 29th ऑफ मे का इंतजार मैं तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बच्चा अभी भी छुपा हुआ है ना, वो बहुत टाइम बाद किसी ट्रेलर को देख के ऐसे खुश हुआ है। बिकॉज दिस मूवी ब्लेंड्स childhood fantasy, family emotions, aliens and superhero chaos into a fresh big screen entertainer. तो देखते हैं हमारे इंडस्ट्री के फ्लाइंग जट के पापा जी कितना कमाल करते हैं। नेहा धूपिया और उनके हस्बैंड अंगद बेदी हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब नॉन फिक्शन सीरीज जिसका नाम है डबल डेट, जिसकी शुरुआत हुई है नेहा धूपिया के यूट्यूब चैनल पे। देखो सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है, जहां सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस के साथ साथ फन गेम्स होंगे, कैंडिड मोमेंट्स होंगे एंड प्लेफुल चैलेंजेस भी होंगे, विच इज गोना हैपन नॉट जस्ट विद द कपल्स ऑफ द इंडस्ट्री बट सिस्टर्स, ब्रदर्स, वैसे वैसे कपल्स एज वेल। खैर अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

हाँ जी, तो बस तैयारी शुरू कर ही ली, मौका भी है और दस्तूर भी। वेल एक्सचेंज रेट्स जब इतने कमाल के हो तो फटाफट से पैसे भेजने की तैयारी जो है वो शुरू कर ही देनी चाहिए। आज तो मौका एंड दस्तूर दोनों है, अकाउंट में पैसे है नहीं, ये आप डिसाइड कर ले। अविंग सदर अगर आज ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.31, इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टका 33.65, नेपाली रुपीज 42.02, लंकन रुपीज 90.27। तो आईपी मनी आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाने की कोशिश कर ही रहा है, आप जो है फटाफट से ट्रांसफर कर अपनी जिंदगी में खुशियों को और बढ़ाई दें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
1: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
3: Cut, cut.
4: Who that?
3: Jassi.
4: Jassi? Kaun si wali Jassi?
3: Jassi who has come, auntie ji?
4: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot. Mirchi. Fresh maal.
6: स्वैग स्टाइल और बोल्ड एनर्जी के साथ सुनो लिपस्टिक.

इस गाने को गाया और कंपोज किया है अदनान सामी ने और लिरिक्स लिखे हैं महिमा भारद्वाज ने, फीचरिंग अदनान सामी एंड भाग्यश्री लिमाई। सुनते रहिए लिपस्टिक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: भाई ये कॉम्बिनेशन देखना तो अलग ही लेवल होगा।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक तरफ सूरज बड़जात्या, दूसरी तरफ है हिमेश रेशमिया। Okay, don't kill me for that. But actually, I'm way too excited for this upcoming film, जिसका नाम है ये प्रेम मोल लिया। और इस मूवी को सूरज बड़जात्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, of course, जिसके म्यूजिक के लिए हिमेश रेशमिया को लिया है उन्होंने। एंड हिमेश रेशमिया इस फिल्म में 7 मेलोडियस सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं। अब तक इस एल्बम पे सिर्फ काम कर रहे थे वो, बट रिसेंट अपडेट्स हैव इट दैट हिमेश रेशमिया के लेबल ने इस फिल्म के सारे गानों के राइट्स ले लिए हैं। बाकी फिल्म के लीड रोल्स में नजर आने वाले हैं आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी वाघ, जो हैं अल्टीमेट सुपरस्टार्स। एंड इन दोनों को सूरज बड़जात्या के फैमिली एंटरटेनर में देखना इज गोना बी रियली स्पेशल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बचपन में कोई भी काम करने से पहले हम ऐलान कर दिया करते थे, जैसे कि अगर जोक सुनाने की भी बात होती थी ना तो हम यही बोलते थे, एक चुटकुला सुनाओ।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, मतलब बचपन में एक तो हम कहाँ कहाँ से तरह तरह के जोक्स उठा के लेकर आया करते थे, और एक ये डायलॉग, जोक सुनाने से पहले ये तो फर्ज बनता था, एक चुटकुला सुनाऊं। आज तो कॉमेडी कहाँ से निकल जाती है पता ही नहीं लगता, लेकिन तब हमें इजाजत लेने की इतनी ज्यादा आदत थी कि चुटकुला सुनाने के लिए भी हम पहले इजाजत लिया करते थे। इट्स जस्ट लाइक, मैम मे आई कम इन, हाँ बेटा कम इन, वैसे ही चुटकुला सुनाओ, हंसनाओ ना, तो हम सुनाना शुरू करेंगे जब तक कोई हाँ नहीं बोल देता। एंड यू नो, इससे मुझे एक और बात बड़ी प्यारी सी याद आई, और वो ये कि एट दैट टाइम आपके पास जोक्स के लिए या तो स्कूल हुआ करता था, दोस्त हुआ करते थे, या आपके कजन्स आपको जोक्स बताया करते थे। ये सोशल मीडिया या फिर यू नो गूगल तो था ही नहीं कि आपको जोक्स पता होते कहीं से, आप कहीं से टीप लो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या हंसाने के लिए। तो एट दैट टाइम ये लोग हुआ करते थे, एंड आई रिमेम्बर नाउ कि मैंने एक जोक बुक खरीदी थी, हाँ एक जोक बुक जिसके अंदर जोक्स पे जोक्स लिखे हुए थे, और फिर वो जोक्स जो थे मैं पढ़ने के बाद समझने की पहले कोशिश किया करती थी, उसके बाद फिर उसको सुनाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन सच बताऊं तो सारे जोक्स एक साइड और हाथी और चींटी के जोक्स एक साइड, बेस्ट जोक्स ऑफ दोज टाइम्स। इनफैक्ट आज भी वो जोक्स अगर कोई सुना देता है ना तो भी हंसी आ जाती है। चलो जी, इसी बात पर मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1.
6: It's hot. Ek goli mar bheje main.
7: Yeah.
6: Ye bheja shor karta hai.

0: 90s बॉलीवुड की फिल्मों के टाइटल्स सिर्फ टाइटल्स नहीं थे बॉस, पूरे एसेज हुआ करते थे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And those were the days जब fashion ही लंबी लंबी movies के titles का होता था। And no one dared to release a movie जिसका one word नाम हो। और यही वो movies हैं जो आज भी हमें डमशराज खेलने में बड़ा मदद करती हैं और हमारी टीम को जिताती हैं। And I've decided कि मैं आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज, जिनके नाम या तो हमने डमशराज में सुने हैं, नहीं तो आगे ये नाम हमें डमशराज जीतने में मदद करेंगे। जिस देश में गंगा रहता है, ये मूवी याद है आपको? मुझे डेफिनेटली याद है। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे और रिंकी खन्ना की ये मूवी। वो दौर था जब गोविंदा की फिल्में फ्लॉप हो रही थी और ये फिल्म इस लिस्ट में एक और नाम था। ये महेश मांजरेकर डायरेक्टेड पहली कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन शुक्र है इसके फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने कॉमेडी फिल्म्स बनाने का आइडिया ड्रॉप नहीं किया और ऐसे ही ये फिल्म हमारे डमशराज की लिस्ट में शामिल हो गई। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म का इस्तेमाल नहीं किया है ना, तो मैं तो कहती हूँ अगली बार के लिए डेफिनेटली याद रखना इस फिल्म का नाम। हाँ चलो, इसी बात पर आपको बिग बॉस, ओहो आई मीन यस बॉस का ये प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: आपने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है इस फिल्म का नाम तो सुना ही होगा।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल हम मिलेनियल्स ने जब जब डमशराज खेला है इस फिल्म के नाम का इस्तेमाल डेफिनेटली किया है। और जो सवाल हम पूछते आ रहे हैं डमशराज में वो यही है कि ये फिल्म एग्जिस्ट भी करती है क्या। एंड द जवाब इज यस करती है। और मैंने सोचा है कि मैं आपको डमशराज की वो फिल्मों के टाइटल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आज जिन पर आज तक हमने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाया है। दिस फिल्म स्टार्ड नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी एंड स्मिता पाटिल। और ये एक आर्ट फिल्म थी जिसमें बात नसीर साहब के कैरेक्टर के गुस्से को लेकर की जा रही थी, जो गुस्सा करते करते अपने गुस्से की वजह से समझता चला जाता है और उसे ये पता लगता जाता है कि जो गुस्सा वो पहले गरीबों पर करता था वो उसे डिजर्व नहीं करते, डिजर्व तो सिर्फ अमीर करते हैं। और इसी चक्कर में अल्बर्ट पिंटो के जो गुस्से का मकसद और मतलब था वो बदल जाता है, लेकिन गुस्सा वो चलता चला जाता है। इसी के साथ बॉस अब मदहोश होने का टाइम आ गया है क्योंकि कमिंग अप कुमार सानू की आवाज में ये गाना फ्रॉम द फिल्म कभी हाँ कभी ना। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कट।
5: अबे कौन है?
4: उत्तपा।
5: उत्तपा कौन?
4: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
5: खट खट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: जाए परेशान ना जाए, साउंड्स लाइक अ डायलॉग, लेकिन ये अर्ली 2000s की एक फिल्म का टाइटल है जो कि डम शराज में अक्सर इस्तेमाल होता है।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं पुरानी उन सारी फिल्मों की बात करूंगी जिनके टाइटल्स हमने अक्सर डमशराज में इस्तेमाल किए हैं या फिर सुने हैं, लेकिन सवाल भी किए हैं कि क्या ये फिल्म वाकई में एग्जिस्ट करती है। एंड यस, ये फिल्म एग्जिस्ट करती है। टेलीविजन एक्टर अमन वर्मा का ये पहला मूवी ब्रेक था और इस मूवी में, जिसमें कि एक्टर्स की लंबी लाइन है, इसमें काम किया है काफी सारे मराठी थिएटर आर्टिस्ट्स ने, नम्रता शिरोडकर, रवीना टंडन, दिया मिर्जा, सुष्मिता सेन का स्पेशल अपीयरेंस एंड महेश मांजरेकर। ये फिल्म टीवी पर खूब हिट हुई थी क्योंकि तब टीवी पर ये नया नया ट्रेंड शुरू किया था जी टीवी वालों ने कि रीसेंट मूवीज टेलीकास्ट की जाएंगी, और ये मूवी इसी एक्साइटमेंट में हिट हो गई। और अब एक जबरदस्त बात होने वाली है क्योंकि जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ ना, वो है ही ऐसा। सोनू निगम की आवाज में कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट तो सर, आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर, मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: टू टू जा फोर.
4: वेट सर, वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब से है नहीं
4: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार.
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: अपने जमाने की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म और हमारी जिंदगी भर के लिए डम शिराज खेलने की फिल्म है ये।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मैं उन फिल्मों के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ जो कि 90s की फिल्में हैं, या फिर 90s से लेकर अब तक हम मिलेनियल्स ने डम शिराज में इन फिल्मों के टाइटल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन फिल्मों के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। सो द नेक्स्ट फिल्म इन लाइन इज रूप की रानी चोरों का राजा। जितनी ये फिल्म एक्सपेंसिव थी ना, उतनी ही बड़ी ये फ्लॉप भी रही थी। और एक किस्सा है अनिल कपूर के साथ जो हुआ, और वो ये था कि ये फिल्म फ्लॉप है, इस बात की खबर अनिल कपूर को 2 दिन पहले ही लग गई थी, क्योंकि कुछ जगहों पर ये फिल्म स्क्रीन हो चुकी थी और उन्हें कोई कॉल्स नहीं आए थे टू कंग्रेचुलेट हिम फॉर द फिल्म। फिल्म के फ्लॉप होने की वजह जावेद अख्तर की राइटिंग को कहा गया, बट अनिल कपूर ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज परफॉर्मेंस। और इस फिल्म के फ्लॉप होने का रीजन जो भी रहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म बनी थी इस वजह से ताकि हमारे डम शिराज की लंबे टाइटल वाली फिल्म की लिस्ट में इस फिल्म का नाम भी ऐड हो सके। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: सलीम लंगड़े पे मत रो, सच सच बताओ, आप आज तक सोचते हो ना कि ऐसी तो कोई फिल्म थी ही नहीं और ये सिर्फ दमशराज के लिए ही बनाया गया एक मन घड़ंत टाइटल है मूवी का।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं माय लॉर्ड, नहीं, ये फिल्म वाकई में एग्जिस्ट करती है। ये बाकायदा एक प्रॉपर फिल्म है जो कि अगेन रिलीज तो 80s में हुई है लेकिन आज तक हमारे दमशराज का हिस्सा है। और शुरू शुरू में तो वी यूज्ड टू क्वेश्चन कि ये वाकई फिल्म है या यूं ही कुछ भी टाइटल दे रहे हैं यार। फिर ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म दमशराज फिल्म ही है, ये एग्जिस्ट करती तो नहीं है, लेकिन इस गेम के लिए हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि ये फिल्म नहीं कोई मनगढ़ंत टाइटल है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होता, जो चीज ना मिले वो खोना नहीं होता और हर डाउटफुल टाइटल वाली फिल्म की एग्जिस्टेंस ना होना नहीं होता। हेंस प्रूव्ड कि दिस लंबे टाइटल की लिस्ट में सवार इस फिल्म का टाइटल और हमारे दमशराज की रेगुलर पार्टिसिपेंट फिल्म डज एग्जिस्ट। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Arre, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
7: Jo ha.

0: इनके नाम में भी नवाज है और ऊपर वाले ने भी इन्हें टैलेंट से खूब नवाजा है। I'm talking about नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका आज बर्थडे है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और यूपी के बुधाना में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक किसान फैमिली को बिलोंग करता था। किसको पता था कि वो लड़का जब बड़ा होगा तो बॉलीवुड में बड़ा बड़ा नाम खेल जाएगा एंड दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहलाएगा। हमें ये तो बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें काफी सारे टफ टाइम्स आए हैं। लेकिन आपको पता है कि एक्टिंग ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड केमिस्ट्री किया था एंड उन्होंने एज अ केमिस्ट भी काम किया था, लेकिन वो अपनी जॉब से ना बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ क्रिएटिव करना था, जिसके लिए वो दिल्ली मूव कर गए और फिर उन्होंने NSD ज्वाइन किया। और NSD में क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है उन्होंने एक दिन के अंदर 10 ड्रामास में पार्टिसिपेट किया एंड ये भी तब जब वो रात में एज अ वॉचमैन काम किया करते थे, यानी कि रात में वॉचमैन की ड्यूटी और दिन में ये 10 ड्रामास का काम। तब जाके उन्हें NSD के अंदर दाखिला मिला और 1996 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम NSD। अब आपसे बात करते करते ना मुझे एक एडवर्टाइजमेंट याद आ रहा है, याद है आपको? मतलब एक झलकी सी याद आ रही है, प्रोडक्ट मुझे क्लियरली याद नहीं है, कि नवाज जो है वो उस एड के अंदर चलते हुए जा रहे हैं एंड देयर इज दिस वॉचमैन हु स्लीपिंग अपनी ड्यूटी टाइम पर, लेकिन नवाज उन्हें कुछ कहते नहीं है। अब समझ आया कि वो जो एड है उसका रेलेवेंस क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद वो काम किया है और वो जानते हैं कि ये जो इंसान अभी ड्यूटी पर सो रहा है ना, इसने दिन में क्या क्या पत्थर तोड़े होंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज बी काइंड टू पीपल, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उनकी बैक स्टोरी क्या है। विशिंग दिस अमेजिंग टैलेंटेड एक्टर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vilva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
2: जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ, आपको थाना आना पड़ेगा।
2: क्यों?
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
2: गए थे जी।
3: आपने धरने पे बैठे थे? आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे। लाठी, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं, आपकी तीन लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
2: हाँ बता, जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई, कैसा? मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
2: जी जी गए थे जी।
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
2: जी जी।
3: आपके पड़ी लाठी कोई?
2: मेरे तो नहीं पड़ी।
3: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार, तीन लाठियाँ आपके लगनी है, और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी है, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
2: सर आप नाराज क्यों?
3: नहीं नहीं, नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ
2: सर। अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था सर, लाठी।
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई, बहुत दूर थे,
2: बहुत दूर था
3: भाई। इतने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप, आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए, तीन लाठियां रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
2: सर नाराज क्यों है?
3: मैं नहीं,
2: तो
3: नाराजगी की तो बात है,
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया।
3: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, तीन लाठियां मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार, क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई, जल्दी आ जाओ भाई यार।
2: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप, हैं? मेरे को तमीज सिखा रहा है, मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है,
2: वो
3: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
4: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहां लाठी चार्ज हुआ था, और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: दिल से है ये आज भी किसान, लेकिन करते हैं ये एक्टिंग का काम. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द बर्थडे बॉय नवाजुद्दीन सिद्दीकी.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, in an interview, नवाजुद्दीन ने खुद बात कही है कि सिंस वो एक फार्मर्स फैमिली को बिलोंग करते हैं तो उन्होंने आज भी खेती बाड़ी छोड़ी नहीं है. जब भी वो कभी अपने गांव जाते हैं ना तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो भी अपने खेत को कल्टिवेट करें और वहां पर काम करें. इसके पीछे की एक बड़ी खूबसूरत वजह बताई है उन्होंने. जिस तरीके से आप और मैं ऑन अ डेली बेसिस कुछ एक ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, जिससे कि हमें कामनेस मिले, यही चीज उन्हें अपनी खेती बाड़ी से मिलती है. और धरती माँ से टच में रहकर ना वो बहुत काम फील करते हैं, विच इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थॉट. क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप धरती से लगे रहोगे, जुड़े रहोगे, तो आप कितने हम्बल भी रहोगे नहीं. और अगर बात की जाए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हम्बल जर्नी की, तो इन्होंने शुरुआत की थी मुन्ना भाई MBBS से. आई डोंट नो आपने ये बात नोटिस करी है कि नहीं करी है, हमने सब ने मुन्ना भाई MBBS तो देखी है ना. उसके अंदर वो सीन याद है आपको, जब सुनील दत्त साहब बॉम्बे पहुंचते हैं अपनी वाइफ के साथ और प्लेटफॉर्म पर ये लोग उतरते हैं तो एक पॉकेट मार आ जाता है और उसको वो पकड़ लेते हैं. वो जो पॉकेट मार था ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है. कहां से कहां तक आ गया यार ये बंदा. सच एन इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी विच क्लियरली स्पीक्स ऑफ द फैक्ट कि लगे रहो मुन्ना भाई तो पहुंच ही जाओगे अपनी मंजिल पर. फ्रॉम मुन्ना भाई टू हॉलीवुड. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी काम किया है. 2016 में देव पटेल की एक मूवी आई थी लायन, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक रोल अदा किया है. वेल, हिज टैलेंट इज सच कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी अननोटिस नहीं जाता है. विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1.
9: It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: साधना सरगम, अनुराधा श्रीराम, उस्ताद सुल्तान खान और राकेश पंडित की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म मकबूल इज अ ब्यूटीफुल पीस.
2: मिर्ची 90s का सेट.
1: गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गाना कैसे चूक सकता है अपने लिरिक्स के वादों से. यार ये गाना म्यूजिक के मामले में तो कमाल है ही है, बिकॉज यहाँ पर हम विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ लिरिक्स गुलजार साहब के हैं और विशाल भारद्वाज की म्यूजिक है, वो कभी फेल नहीं हो सकता. तो म्यूजिक तो इस गाने का कमाल है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल मुझे गुलजार साहब के बोल लगते हैं. ये कॉम्प्लीमेंट इतनी खूबसूरती से करते हैं ना इस म्यूजिक को कि क्या ही बताऊं. हालांकि ये जो लेख है, ये पूरा का पूरा लिरिक्स का जो लेख है, दैट is quite a lot inspired by Amir Khusro ki writing, who is the father of Qawwali, by the way. And ye gana jo hai, ye basically set hai on a shaadi ka ghar, jahan par ek dulhan ke baare mein baat ki ja rahi hai ki kaise wo sharma rahi hai, kaise wo itla rahi hai, apne piya se milne ki chaah rakh pa rahi hai. Aur iske lyrics agar aap gaur se suno na, to aapko ye lyrics bahut pasand aayenge, because of the reason ki is gaane mein sabse zyada highlight hota hai Jinmin Jini, hai na. Lekin jab lyrical part aata hai na, to aksar hum idhar udhar ho jaate हैं या म्यूजिक में खो जाते हैं. मगर मैं आपसे कहूंगी कि अब जब मैं ये गाना चलाऊंगी ना आपके लिए, तो इसके लिरिक्स को गौर से सुनना, जिसका एक पार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वेयर इन इट इज सेड कि हिना में छुपा के जिया रख दिया. यानी कि जब दुल्हन मेहंदी लगाती है तो उस मेहंदी के अंदर दूल्हे का नाम छुपा हुआ होता है ना, तो उससे रेलिवेंट ये बात कही गई है कि हिना में छुपा के जिया रख दिया, हथेली पे जलतू दिया रख दिया, ओए होए, रोशन रोशन पैरों से खुद ही शर्माऊं. यानी कि रोशन रोशन पैर तब जब वो मेहंदी के रंग से रोशनी दे रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, निखर रहे होते हैं. मैं इस पग उस पग डोलू, जाऊं ना जाऊं. यानी कि दुल्हन जो है वो ये सोच रही है कि यार ये जो मेरे मेहंदी के पैर हैं, मैं इनको इधर उधर रखती हुई दूल्हे से मिलने के लिए जाऊं या ना जाऊं. बस अब मैं ये गाना चलाऊं ताकि आप इस गाने को गौर से सुनो, इंजॉय करो, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा. कमिंग अप दिस ट्रैक फॉर यू, यू स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
2: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
3: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
2: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
1: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
4: Only on Mirchi, it's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Bhatt.
6: Bhatt? Are Bhatt who?
5: Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt, Bhatt. Bike bahut awaz karti hai.
6: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए चार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: सलाम नमस्ते, क्या हाल चाल कतर वालों? हाँ जी, हैरान मत होइए, मिर्ची ईशा आ चुकी है आपकी शाम को शानदार करने। लेकिन हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आवाज़ को तो हम वीकेंड पे सुनते हैं, लेकिन आज वीकडे में कैसे? अरे चिंता मत करिए, 10 दिन की मेहमान हूँ मैं, आपको 10 दिन तक एंटरटेन करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ वो सारी खूबसूरत हसीन बातें कतर की। एंड ऑल्सो आपको बताने वाली हूँ क्या कॉन्टेस्ट होने वाले हैं, क्या होने वाला है, सब कुछ अभी यहीं पर मेरे शो पर आपको बताऊँगी, आपकी शानदार शाम बनाऊँगी। एंड उसके लिए आपको बस ट्यून रहना है मेरे साथ, यानी मिर्ची ईशा के साथ बने रहना है, only on 89.6 मिर्ची वाट, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La firma la burka. Milchi, burka.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स पटाक।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है नेचर के साथ शॉपिंग करने का और अपनी फैमिली को टाइम देने का, तो कैसा लगेगा आपको? वेलकम बैक भाई श्याम, शानदार आपकी गर्मी में आ चुकी हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, एक ऐसा इवेंट जो कतर में होने वाला है भाई। इवेंट्स कतर में वैसे भी एक नंबर होते हैं, लेकिन ये वाला वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है जो बड़ी लग्जूरियस है यार, सच्ची में। टोरबा मार्केट जो हो रही है ऑन द ब्रिज, जी हाँ, ब्रिज के ऊपर ये मार्केट लग रही है। एंड ये हो रही है कनटकार तीर में, एंड इट्स द पर्ल दोहा में, एंड ये 23 मई 2026 को हो रही है, एंड 5 to 9 PM इसका टाइमिंग है। एक्सेस बिल्कुल फ्री है, जा सकते हैं, एकदम बढ़िया ऑप्शन है यार। मतलब शाम में ना जब ये 5 बजे का टाइम होता है तो मन करता है कि घर से बाहर निकलें और इन्जॉय करें, क्योंकि इतनी खूबसूरत हवा चल रही होती है और वो वाइब जो आप यू नो कोप अप करना चाहते हैं एक स्ट्रेसफुल डे के बाद, इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप ये जो इवेंट है आप इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बाकी आपको ऐसे ही इवेंट मैं आपको भी बताती रहूंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Hello shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
2: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
1: Relative se advice slow to kehte hain.
3: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge, to future bright hoga.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: वेदर अपडेट।
2: जी हाँ, मॉर्निंग में सनी साइड अप बन जाएगा आपका, क्योंकि 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है एंड शाम में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। बाकी खूब सारा पानी पीजिए, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हमें यानी कि मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8 हॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसे चॉकलेट्स खत्म कर दिया. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
2: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट,
5: हू देयर?
4: बनता
5: बनता हूँ.
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
5: खट खट, हू देयर?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था।
1: ये बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू

0: Mix. It's hot. Mirchi. Fresh Mal.
1: Desi Swag और High Energy Dance Vibe के साथ सुनो. विया करवा दो जी.

0: गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: माँ के हाथ का खाना तो खाया होगा आपने, लेकिन माँ के हाथ की मार खाई है? ओए होए, जो माँ के हाथ की मार खाने का मजा है ना, वो खाना खाने में कहाँ यार। सच्ची में मार खाए बिना आप बड़े कैसे हो गए? नहीं हो सकते। जेंटल पेरेंटिंग आई नो कुछ होती है चीज, लेकिन जो माँ की मार होती है ना, डांट होती है, इसमें एक अलग ही वो मिठास होती है। बाकी माँ से मैं आपको बता दूँ, माँ की ममता से आपको बता दूँ कि भाई माँ के लिए हमने एक अवार्ड हर साल करती है मिर्ची, तो मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 5.0 आ चुका है जी। हाँ, आ गया है। अपनी एंट्रीज को आपने सेंड करना है 5001896 पे। एंट्रीज के लिए करना क्या है, आपको एक रील बनानी है अपने बच्चे के साथ, अपना एक बॉन्ड, जो लविंग बॉन्ड है वो क्रिएट करके वीडियो आपको सेंड कर देनी है 5001896 पे, और फिर हम आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे कि भाई आइए, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। एंड आई नो दिस टाइम वी आर गोइंग टू गिव यू 100% चांस कि आप लोग आएंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे और एंजॉय करेंगे हमारे साथ। तो भाई बस एंट्री भेजिए अपनी और एंजॉय करिए हमारे साथ, और ऐसी ही मस्त मस्त बातें के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी मिर्ची ईशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Burka, burka. La vidva la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Water से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी.
3: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
2: ठीक है सर.
3: 5 सेकंड जल्दी.
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
3: हेलो
2: हेलो,
3: प्लीज जल्दी बता दो.
2: कोई कस्टमर के लिए. हेलो
3: हेलो,
2: बात की
3: होल्ड नहीं कर सकता. हेलो,
5: हाँ जी सर.
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड.
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो सर.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: सर साइड में, लेफ्ट साइड में.
3: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर, इग्निशन ऑफ कर दो.
3: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
5: हाँ जी.
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है. एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी.
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
5: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
3: एक सेकंड रुके. आए.
5: क्या हो गया?
3: आए, गाड़ी ठुक गई.
4: मैडम, क्या नाम है आपका?
2: दिव्या.
4: दिव्या, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
2: I was so dense, I thought, what happened?
6: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot. ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: बीवी के पैसे मिल गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। मैं बताती हूँ। आईसीसी लेके आया है ईद बाजार एंड मेहंदी नाइट 2026 जो हो रहा है फ्राइडे एंड ऑन सैटरडे एज वेल, जो 22nd एंड 23rd मई 2026 को हो रहा है एट आईसीसी में ही हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो हसीन मौका जहाँ पे आप शॉपिंग के साथ साथ इंडियन क्यूजींस को भी इंजॉय कर सकते हैं। जहाँ पे शॉपिंग में एक लड़की क्या क्या ढूंढती है भाई, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, ट्रेडिशनल क्लोथिंग हो एंड लेदर प्रोडक्ट्स, बैग्स हो, ये सब चीजें ढूंढती है ना, तो बस आपको आईसीसी जाना है और वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी अंडर वन रूफ। एंड इसके अलावा आप इंजॉय कर सकते हैं मेहंदी के अलग अलग डिजाइंस। यस, वहां पे हिना एप्लीकेशन भी हो रही है, आप बैठ के आराम से बच्चों को लगवाइए, खुद लगाइए, इंजॉय करिए। मतलब ये जो फेस्टिवल होता है ना, ये हमेशा से ही फैमिलीज को यूनाइट करता है, एंजॉय करवाता है, साथ साथ आपको और you know, खुशी के पल देता है एंड हैप्पीनेस जो मेमोरीज होती हैं वो संजोने के लिए मजबूर करता है। तो आप जाइए इस वीकेंड और एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। बाकी स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोट,
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
2: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
1: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bolda, Bollywood Bolda, only on Mirchi, it's hot.
3: Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.

बात करें एक्सचेंज रेट्स की, तो भाई एक कतरी रियाल इंडियन करेंसी में 26.41, एक कतरी रियाल लंकन रुपीज में 91.69, एक कतरी रियाल इक्वल्स टू बांग्लादेशी टका 33.65, बात करें एक कतरी रियाल नेपाली रुपीज में तो 42.20, और एक कतरी रियाल इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज 76.90। बस ये था पैसों का हालचाल, बोले तो झकास पैसे की बात।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: It's hot.
1: कहते हैं ना दुनिया में सब चीजें छूट जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपसे छूटती नहीं। Well, I'm talking about that one thing is the books. Yes, इससे आपका नाता कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि books ही एक ऐसी चीज़ है जो awareness के साथ साथ knowledge बढ़ाती है, knowledge के साथ साथ आपके बच्चों को इतना skilled करती है कि वो अपने पैरों पे अपने लिए कोई भी decision making कर सके। ये सब आदतें आपको book reading से ही आती है, तो मैं ज़रूर यही कहूँगी कि अपने बच्चों में जो book reading का कीड़ा है वो ज़रूर डालिए और उनको बोलिए कि भाई बुक एक बेस्ट फ्रेंड है आपका जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, कोई रहे ना रहे, लेकिन बुक्स विल बी देयर विद यू ऑलवेज। तो बस अगर आप भी अपने बच्चों के साथ इस किसी भी दिन जाना चाहते हैं, वीकेंड पे जाना चाहते हैं या आज या कल में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं बुक फेयर देखने। एंड अगर आप बुक लवर है ना तो भाई आप वहां पे खो जाएंगे, क्योंकि वो फेयर एक ऐसा फेयर होता है जहां पे आपको टन्स एंड टन्स ऑफ बुक्स दिखती हैं। एंड ये हो रहा है DECC में, उसके अलावा एंट्री बिल्कुल फ्री है एंड 23rd में तक ही है, तो जल्दी से जाना बनता है बॉस, क्योंकि ये 9 AM टू 10 PM तक है, सैटरडे टू थर्सडे एंड फ्राइडे को इट्स 3 PM टू 10 PM। तो ज़रूर जाइए, बिकॉज जो अपने बच्चों से करे प्यार तो बुक से वो कैसे करे इनकार, सही में, क्योंकि आपको जाना बनता है। बुक फेयर देखिए, बच्चों को दिखाइए, इन्जॉय करिए एंड स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.8।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर, वेट.
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
4: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी.
4: गुड सर, वेरी गुड सर.
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
4: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
3: पूछो यार.
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
3: पूरे 100.
4: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा.
4: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं.
4: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये जवाब मैंने दिया. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।
1: हो सवा

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बचपन में आपने मौत का कुआं देखा है? अगर आपने मौत का कुआं नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। वेलकम बैक, मैं हूँ मिर्ची ईशा और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे डेयरिंग सर्कस की जो शायद आप उससे रूबरू नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर्कस को देखें, इंजॉय करें और कुछ नया सीखें, तो आपके लिए आ चुका है फंटाना। जी हाँ, फंटाना बाय सर्क्यू ड्यू लिबान आ चुका है। ये सर्कस टेंट में हो रहा है हयात प्लाजा में। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं जल्दी से जाइए, क्योंकि 31 मई तक है ये एंड ये वेडनेसडे से सैटरडे तक होते हैं। मैं आपको टाइमिंग से रूबरू करवा देती हूँ, क्योंकि टाइमिंग्स एप्ट पता होने जरूरी है कि कहीं आपका शो निकल ना जाए। तो इसलिए टाइमिंग इसके हैं, वेडनेसडे को आपको 7 PM to 9 PM मिलेगा एंड इट्स थर्सडे टू सैटरडे, थर्सडे से लेके सैटरडे तक 4 PM से लेके 6 PM तक मिलेगा एंड ऑल्सो 7 PM to 9 PM एज वेल। तो आप अगर जाना चाह रहे हैं इस हफ्ते, अपनी जो डेट है ना मार्क कर लीजिए, बच्चों को लेके जाइए, कुछ नया दिखाइए, कुछ सिखाइए, एंजॉय करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: Authentic, original, and better than our right.

लेडीज एंड लेडीज, क्या हाल चाल? मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आई हूँ, मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 5.0। जी हाँ, जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है क्राउन पहनने का, उस मॉमी अवार्ड्स का जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट मदरहुड, वी सेलिब्रेट एवरीथिंग दैट टैलेंटेड लेडी आउट देयर। जी हाँ, आप लोगों के लिए ये हसीन मौका मैं दे रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ कि मिर्ची मॉमी अवार्ड्स की एंट्रीज के लिए आपको करना क्या है। एक मिनट की वीडियो बनानी है, अपना बॉन्ड शेयर करना है अपने बच्चे के साथ, 5000186 पे भेजना है, 5000186 पे जल्दी से अपनी एंट्रीज भेजिए और हम आपको बुलाएंगे हमारे पास और इंजॉय करेंगे और आपके साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे और आपको इंजॉय भी करवाएंगे। बस जल्दी से जाके अपनी एंट्रीज जल्दी से भेजिए और इंजॉय करिए हमारे साथ, यानी कि आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे और भी हसीन सी खुलासे करेंगे इस इवेंट को लेके। बस आपको करना क्या है, स्टे ट्यून विद अस, चाहे इंस्टाग्राम पे और चाहे हमारी रेडियो स्टेशन पे। तो बस ट्यून इन रही 89.6 मिर्ची 1 पे। इट्स ऑल।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर? जाहिर हूँ।
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खट खट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1
1: इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। और अगर आपको इस मौसम में घूमने से कोई नहीं रोक सकता तो वो एक ही चीज है, एसी, एसी, एसी। जी हाँ, एयर कंडीशनिंग हर जगह होनी चाहिए। बस वही बताने आई हूँ कि कतर में ऐसी ऐसी स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे एसीज आउटडोर और आप एंजॉय कर सकते हैं बिना गर्मी को हाई गर्मी करते हुए। जी हाँ, 45 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी आप आउटडोर में एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जगहें बता देती हूँ, टॉर्नेडो ड्यून प्लाजा जहाँ पे एसी है आप एंजॉय कर सकते हैं, ओल्ड दोहा पोर्ट, गिवान आइलैंड, 21 हाई स्ट्रीट, वेस्ट वॉक एंड लुसेल बुलेवार्ड एंड प्लेस वंडम, अल हजम, ओ माय गॉड, इन सब जगह आपको एसी मिलेंगे। उसके अलावा सूक वाकिफ में भी आपको आउटडोर एसीज मिल सकते हैं, ऑक्सीजन पार्क, अल घराफा पार्क, रौदत अल हमामा पार्क एंड अल सनीम पार्क। जी हाँ, ये सारे पार्क्स जो मैंने आपको बताए, जल्दी से जल्दी अपना प्लान उस अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। आउटडोर जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाइए और गर्मी की जगह सर्दी में एंजॉय कीजिए। जी हाँ, एसी के अंदर आउटडोर भी एंजॉय हो जाएगा, एसी में भी एंजॉय हो जाएगा। भाई अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई बड़ी गर्मी है, हाई गर्मी, हाई गर्मी। अब आप एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आउटडोर एसीज है। अच्छा, तो बस ये मैंने आपको बता दिया ना, ये था आपके लिए स्पेशल। देखिए, ये एक ऐसी चीज है ना जो बड़ी हिडन है, हिडन जेम भी बताया मैंने आपको। इतनी सारी जगहें बता दी जहाँ पे आउटडोर एसीज है, आपको जाना है तो जा सकते हैं इस तपती गर्मी में भी एंजॉय करने के लिए। बाकी स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virba la murga. Mirci, murga.
1: हेलो
2: हेलो भाई, संतोष से बात कर रहा हूँ। मेरी
1: जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी भाई संतोष, यहाँ थाने से बोल रहा हूँ। आपको थाना आना पड़ेगा।
1: क्यों?
2: मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर?
1: जी गए थे जी।
2: आपने धरने पे बैठे थे? आप
1: जी बैठे थे
2: वहाँ पे। लाठी वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, सबके लाठियाँ पड़ी थी, आपके रह गई हैं। आपकी 3 लाठियाँ लगनी है, यहाँ आके लगवा लो जल्दी से।
1: हाँ, हम तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे।
2: जस्टिस कैसा? जस्टिस भाई कैसा, मैं ये नहीं जानता जस्टिस। आप वहाँ पे गए थे, आप इस बात को मान रहे हो?
1: जी जी गए थे जी।
2: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे?
1: जी जी।
2: आपके पड़ी लाठी कोई?
1: मेरे तो नहीं पड़ी।
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके 3 लाठियाँ रख गई हैं यार। 3 लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है, तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे, वो वहाँ चले जाओ, वो 2-3 लाठियाँ मार देगा आपके यार। वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है, वो कह रहे हैं सबके लाठी पड़ी, आपके पड़ी नहीं, आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से।
1: सर आप नाराज क्यों?
2: नहीं नहीं, नाराज क्यों की बात है, बताइए। हाँ बताओ।
1: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था, कहाँ पे? बहुत दूर था लाठी।
2: तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई? बहुत दूर थे,
1: बहुत दूर था
2: भाई। तने मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत दूर खड़े थे आप। आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ?
1: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप बच गए। 3 लाठियाँ रजिस्टर पे चढ़ाई, अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी?
1: सर नाराज क्यों है?
2: तो नाराजगी की तो बात है,
1: मैं दोस्तों के कहने पे गया
2: तो अब मैं आपसे, मैं भी आपका दोस्त हुआ, आपको आ जाओ, 3 लाठियाँ मारेंगे आपके, छोड़ देंगे आपको यार। क्या परेशानी है? वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में 3 लाठी चढ़ा दी, इसलिए मारनी है भाई। जल्दी आ जाओ भाई यार।
1: सर मैं शाम में आ जाऊंगा
2: यार। नहीं नहीं यार, मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप। हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है? मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई। इस बात समझ में नहीं आ रही, लाठी चार्ज हुआ था उसमें 3 लाठियाँ तुम्हारे नाम की है।
1: वो
2: बहुत दूर था, नाराज वाली बात है यार। ओके चलो, लाठी मत करो, लाठी नहीं मारेंगे, मुर्गा बन जाओ।
3: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी, वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखिए, कतर हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचता है, ये लाजमी है। और हाल ही में कतर को नंबर 1 रैंक से नवाजा गया है रीजनली इन द रेजिलिएंट फूड सिस्टम इंडेक्स में। नाइनटीन्थ ग्लोबली इन 2026 रेजिलिएंट फूड सिस्टम इंडेक्स में एंड फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया रैंक 24th एंड वाइल यूएई प्लेस्ड 26th। और ये जो इंडेक्स होता है ना, इसके बारे में मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये मेजर करता है किस तरीके से कंट्री मेंटेन करती है अपने अफोर्डेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, रिलायबल फूड सिस्टम्स के लिए, कि किस तरीके से लोगों का जो भरोसा है एक कंट्री पे खाने के लिए, चाहे वो सेफ्टी के लिए हो चाहे खाने के लिए हो, हर चीज़ में कतर प्रूव्स दैट दिस इज द वन ऑफ द कंट्री विच इज़ द सेफेस्ट इन फूड एंड इन पर्सन एज वेल। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि आज आई एम लिविंग इन कतर। एंड चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो क्लाइमेटिक या इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस हो, किसी भी तरीके के डिस्ट्रप्शंस हो, कतर ने उस इंडेक्स में अपने आप को नंबर 1 रैंक पे लाया है। काबिले तारीफ है, हम सब के लिए ये प्राउड मोमेंट है। वी फील प्राइड दैट वी आर अ कतर रेजिडेंट एंड वी आर हैप्पी इन दैट। एंड उसके अलावा बात करें कि कतर जो है हमेशा से ही कुछ ना कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज अपनाता रहता है। तो दे ऑल्सो हैव सम स्ट्रैटेजीज फॉर द फूड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2030 के लिए उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है लॉन्ग टर्म, कुछ फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ नियम करें हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप एंड अ वेरी फ्यूचरिस्टिक, और आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन जो कतर गवर्नमेंट हमेशा लेती है अपने लोगों के लिए, हमारी आवाम के लिए, बहुत ही काबिल तारीफ है भाई। और क्या कहें, कतर की यही तो खासियत है, यही तो कतर हमें यहीं पे रहने पे मजबूर कर देता है। खूबसूरत कतर, और क्या ही कहें। बाकी फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.4।
1: देखो कि मैं जा रहे हैं।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
3: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
2: क्या होता?
3: रोड साइड रोमियो।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कभी अलविदा ना कहना, लेकिन कहना पड़ेगा। इस मोमेंट को ना लाइक मैं स्टॉप करना चाहती हूँ यार। क्यों हम लोग अलविदा कहते हैं किसी को? मुझे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा जो कंटाल आता है ना, या कह लो बड़ा दुखद मोमेंट लगता है ना, वो लगता है किसी को बाय करो। चाहे मैं कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, चाहे मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझसे बाय नहीं कहा जाता। चाहे इतनी भी चार घंटे तक मेरे से बात करते रहो, लेकिन मैं आपको बाय नहीं बोलूंगी। लेकिन ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मुझे आपको बाय कहना पड़ेगा और मुझे आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। आपको मिलूंगी कल दोबारा इसी समय, और आपसे अलविदा लेने का समय तो आ गया, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे पेज को यानी कि मिर्ची वन कतर को फॉलो कीजिए, वहां पे आप अपडेटेड रहेंगे हमारे जितने भी इवेंट्स, जो भी एग्जीबिशन, जो भी कॉन्टेस्ट हम निकालते हैं वो सब वहां पे अपडेटेड रहता है। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मिर्ची की ईशा को, और बस हमें सुनते रहिए यानी कि 89.6 ट्यून इन रखिए। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए
5: खट खट, हु दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: अब बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल और कई सारे लोगों के जहन में सवाल आता ही है। मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में किसी ना किसी जिंदगी के मोड़ पे तो ये सवाल आता है कि आखिर ये इश्क बला क्या है। इरफान सतार साहब की एक बड़ी खूबसूरत गजल के दो शेर सुना रहा हूँ आपको, जिसमें उन्होंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि ये इश्क क्या है। अपनी खबर ना उसका पता है, ये इश्क है जो था नहीं है और न था है, ये इश्क है। और पहले जो था वो सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, लेकिन जो तुमसे मिल के हुआ है ये इश्क है। आए हाय। और इश्क ऐसी चीज है ना, रूप बदलती रहती है, तो जितने सवाल हैं उतने ही जवाब। आपके लिए इश्क क्या है बताइए मुझे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर आया है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको रूबरू कराया जाए हमारे आज के शायर सुदर्शन फाकिर साहब से। सुदर्शन फाकिर साहब का वास्तविक नाम जो था वो सुदर्शन कामरा था और भारत के बड़े अजीम शायर और गीतकार रहे। उनकी कई गजलें ठुमरियां और नज़में

आय हाय हाय हाय, क्या जमाने थे यार। खतों पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल जाती थी, है ना। अब वीडियो कॉल नहीं पूरा कर पा रही है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ। बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और अब है मेरा सबसे पसंदीदा वक्त
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और हाँ जी, वक्त है आज का ताशी अनप्लग्ड आपको नजर करने का। और ये जो गजल है अमीक हनफी साहब की है और मेरी बड़ी पसंदीदा है। और आजकल का जिस तरीके का वक्त है ना, कि भेदभाव बढ़ता जा रहा है और लोगों के बीच में एक दूरी आ रही है, आज के जैसे वक्त में मेरे ख्याल से इस गजल का मानी और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोगों तक पहुंचे। This is मैं हवा हूं कहां वतन मेरा।

उम्मीद है गजल आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो ऐसी ही और गजलें आपको मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। वहां मुलाकात होती है आपसे। तब तक स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: खट खट अकबर।
2: अकबर हु?
1: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
2: खट खट हु दैट।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: भाई ये तो हम जानते हैं कि किशोर कुमार ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अपने ग्रोइंग अप इयर्स में जब वो संगीत सीखना चाहते थे तो क्यों नहीं सीख पाए? सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था और कैसे शेयर किया था।
1: चल के तुझे

0: लेकिन हकीकत ये है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज्यादा। वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा कि मैं बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया।
1: भाई बिना संगीत की शिक्षा के ये ऐसे तोप थे, शिक्षा ले लेते तो पता नहीं क्या ही ये तोप बड़ुम बड़ाम कर देती। और पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। हाँ।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. Navirbala, murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes.
3: Water से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी.
3: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
2: ठीक है sir.
3: 5 seconds जल्दी.
4: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो,
3: प्लीज जल्दी बता दो.
2: कोई कस्टमर के लाए हेलो
3: हेलो
2: बात की
3: होल्ड नहीं कर सकता. हेलो
5: हाँ जी सर.
3: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड
5: सर हैंड ब्रेक खींच दो. सर
3: एक सेकंड रुकिए
5: सर. साइड में, लेफ्ट साइड में.
3: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा था, कैसे रुकूं? एक सेकंड
5: सर. इग्निशन ऑफ कर दो.
3: इग्निशन एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
5: हाँ जी.
3: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
5: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
3: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
5: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
3: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
5: हाँ जी.
3: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
5: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
3: क्या करूँ?
5: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
3: एक सेकंड रुकिए.
5: क्या हो गया?
3: गाड़ी ठुक गई.
2: Yes.
4: मैडम क्या नाम है आपका?
2: दिव्या.
4: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
2: I was so dense, I don't know what happened.
6: कुकड़ूंगू. मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष.
6: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन. 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, only on

0: ये तो हमको पता ही नहीं था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि बॉबी फिल्म जो ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मेन रोल बॉबी के रोल के लिए नीतू सिंह का भी ऑडिशन हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हुई, डिंपल कपाड़िया सिलेक्ट हो गई। भाई वैसे नीतू जी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती थी, बट ये बड़े होने के बाद वाला जो डेब्यू होता है वो फ्यूचर हस्बैंड के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी साल फ्यूचर जेठ जी के साथ इनका फिल्मी डेब्यू हो गया 1973 की ही फिल्म रिक्शा वाला में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी वाला एक और गाना सुन लेते हैं। काफी सेंसुअस हॉट गाना है ये। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है। और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM Mirchi 1
12: It's hot
13: Purani
0: Purani Jeans with Charu only

आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का वो गाना देखा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इट्स अ फन सॉन्ग जहाँ पे देवानंद हेमा मालिनी को सॉर्ट ऑफ टीज कर रहे हैं, उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग खिड़कियों के द्वारा। उस घर में इतनी खिड़कियां दिखाई गई हैं भाई, इतनी खिड़कियां हैं, ऐसा सोच के लगता है कि ए वुमन लाइक हेमा मालिनी इज लिविंग देयर, इट इज सो अनसेफ। हालांकि खिड़कियां बंद करने के तरीके हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा भी तरीका है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां, इतनी सारी छिपकलियां घुस आती होंगी गर्मियों में, चूहे तक घुस सकते हैं। अरे चूहे क्या, डॉग्स कैट्स कुछ भी आ सकता है, कबूतर, इतनी खुली खुली खिड़कियां हैं, वो मेंटेन करनी कितनी मुश्किल हो, और रात को सोने से पहले कितनी खिड़कियां बंद करोगे। अगली बार वो गाना देखे तो ध्यान से देखे और काउंट भी करना कितनी खिड़कियां हैं, मैं भी काउंट करूंगी अगली बार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Cut, cut.
7: Who that?
6: Agarkar.
7: Agarkar who?
6: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
7: Cut, cut. Who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1.
9: Mirchi,
8: it's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

So the other day I watched this film called झूठी and I fell in love with Rekha once again. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. ये ना मिड 80s की फिल्म है जब रेखा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वो बहुत फिट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं. मुझे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी. तो इसमें ना उनको घर में सबसे छोटी दिखाया गया है, वो बहुत पैम्पर्ड भी है और उनको झूठ बोलने की आदत है. इस फिल्म में अमोल पालेकर, राज बब्बर ये लोग हैं. और ऐसी क्यूट हार्ट वार्मिंग सी फिल्में किनकी होती हैं? ऋषिकेश मुखर्जी की. अगर आपने फिल्म नहीं देखी प्लीज देखें. और अभी हम गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसे बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसमें रेखा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड. खूबसूरत फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च.

तिगतिष्ठा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज में लत लपट जपट राधा ललिता चंद्रा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

भाई ज्यादातर लोग सुप्रिया पाठक जी को खिचड़ी टीवी शो में उनके हंसा के रोल के लिए याद रखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही कि मेरा नाम हंसा और प्रफुल व्हाट इज एंड माय फेवरेट मैं तो थक गई बाई चाप। नो वंडर दिस परफॉर्मेंस दिस रोल इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुप्रिया पाठक जी ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स। आपको पता है ना ये फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक जी की डॉटर हैं और इनके फादर बलदेव पाठक यूज्ड टू मेक ड्रेसेस फॉर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार। एनीवे कमिंग बैक टू हर परफॉर्मेंसेस, इनको इनकी पहली फिल्म 1981 की कलयुग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसके बाद की जो इनकी फिल्म थी उसके लिए भी उनको यही अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का हम यहाँ गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम बाजार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi murga. Murga.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
2: गुड इवनिंग
3: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
2: ओके
3: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट फाइन. तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास 2 मिनट होंगे. और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर, वेट.
2: फंक्शन कहाँ हो रहा है
3: सर? यही पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
2: डर जाएगी.
3: गुड सर, वेरी गुड सर.
2: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
3: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
2: नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
3: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
2: पूछो यार.
3: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
2: पूरे 100.
3: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण मावे पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
2: जेल में जाना पड़ेगा.
3: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
2: समझा नहीं मैं.
3: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1975 की फिल्म जख्मी का ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है ये फिल्म ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी जो आमिर खान के फादर थे। और आमिर खान की दो फिल्मों का नाम पहले जख्मी होने वाला था। एक तो उनकी 1998 की जो गुलाम फिल्म थी वो, और फिर 2012 की तलाश। लेकिन किसी वजह से फिर जख्मी नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम में क्या रखा है? कहा था विलियम शेक्सपियर ने, गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकार लें, गुलाब की खुशबू तो वैसी ही रहेगी ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। यहाँ पे नाम में काफी कुछ रखा है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए।
4: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है, और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
3: क्या होता?
4: रोड साइड रोमियो।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
7: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: Purani jeans, charu ke saath. Sirf Mirchi par.

1976 का मास्टरपीस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ बहनों भाइयों, उस साल गीत माला में ये गीत पायदान नंबर एक पर था। इस गाने के लिए खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, साहिर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, खयाम साहब ने ना ये गाना, इस गाने की जो ट्यून है, ये 50s की किसी फिल्म के लिए कंपोज की थी। वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, गीता दत्त एंड सुधा मल्होत्रा उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई या रिलीज नहीं हुई, तो वो गाना खयाम साहब के पास पड़ा हुआ था। तो जब ये कभी कभी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उन्होंने यश चोपड़ा को ये ट्यून सुनाई, चोपड़ा साहब को पसंद आ गई, साहिर साहब के लिरिसिस्ट इस पे फिट कर दिए गए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया और ये मास्टरपीस बन गया। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Bollywood Boulder, only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu, only on

यार इस गाने को इसका वीडियो देखते हुए सुन लो ना, तो ये सैड सॉन्ग से कॉमेडी सॉन्ग बन जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गैम्बलर फिल्म का ये गाना जिसमें देवानंद साहब ने ऐसी मूछें लगा रखी हैं जो बहुत फनी लगती हैं। वैसे देखो देवानंद साहब बहुत बोल्ड थे, बहुत स्टाइलिश थे, अपने लुक्स के साथ वो इतना एक्सपेरिमेंट करते थे, रिस्क लेते थे, लेकिन ये वाली मूछें ना ये बड़ी शॉर्टी लग रही हैं। वो जो नाटक नौटंकी थिएटर वाली मूछें नहीं होती बस ऐसे चिपका दिए हैं, वो वैसी लग रही है। चलो ये मुच्छी वाला एपिसोड साइड रखें, तो अदरवाइज देवानंद साहब के स्कार्फ्स, उनकी जैकेट्स, उनके स्वेटर्स, इवन इन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स अगर आप देखें उनका स्टाइल ऐसे नोटिसेबल होता था। और एक और स्टाइल आइकॉन जो कि जीते जागते स्टाइल एंड फैशन की मूरत थे, फिरोज खान साहब, उनका गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
0: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: रात के बज चुके हैं 10 मिर्ची पे, शो का नाम पुरानी जीन्स। रात के बज चुके हैं 10 मिर्ची पे, शो का नाम पुरानी जीन्स।

भाई एक शायर हैं हसन कमाल साहब, उनकी मैं गजल पढ़ रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो कहते हैं, सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे, गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमाओं की दुकान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था, हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। लोग तो बुझते चिरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहां बैठे थे। मैं कदा शराब खाना, मैं कदा और भी तन्हाई का सामान निकला, हम की तन्हाई से तंग आके यहां बैठे थे। हसन कमाल साहब ने बहुत सुंदर फिल्मी गीत और गजल भी लिखे हैं, तो उनकी लिखी ये खूबसूरत गजल सुन लेते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: आपको पता है 80s में अमृता सिंह को मजाक में मर्द सिंह भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये क्या सीन था, कौन उन्हें ऐसे बुलाता था, किसने उन्हें ऐसा नाम दिया, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया ये मैंने नहीं दिया, ये एक बार टिंपू कपूर ने मुझे दिया था। मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था, तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो। फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई।
0: चिंपू कपूर यानी कि राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई, इन लोगों ने 80s में आई थिंक एक दो फिल्मों में साथ में काम किया था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जो अमृता सिंह और राज बब्बर पे पिक्चराइज्ड है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: 89.6
2: Mirchi.
3: Mirchi stories.
4: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
5: यार तूने सुना, एक बंदे ने अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर बायोडाटा की जगह गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर लगा दिए और उसके बाद में उसको 69,000 मैचेस मिल गए.
6: भाई ये तो संपत्ति दिखा के पति बनने चला है. और अगर इसकी प्रॉपर्टी हाईवे पे होती तो पता है इसका नाम क्या होता?
5: क्या होता?
6: रोड साइड रोमियो.
2: मिर्ची, इट्स हॉट.
7: Our business is our business, none of your business.
8: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
9: Qatar का number one radio station.
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Purani jeans with Charu, only on.

पूछो मेरी आहों को समझो, तुम पूजा हम पुजारी, तुम किस्मत

0: वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी स्मिता पाटिल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको ज्यादातर उनकी 8 फिल्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने बहुत ही बोल्ड वुमेन सेंट्रिक रोल्स प्ले किए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है, या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था।
0: वेल, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, याद है नमक हलाल, शक्ति, ऐसी फिल्में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: खटखट,
5: कौन है?
2: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
2: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
5: खटखट, who that?
6: Only on 89.6 मिर्ची 1, it's hot.
7: मिर्ची की स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है शाम के 4। मस्त मौला गौरव के साथ शुरू होता है शाम शानदार।

फिजिसिस्ट इंदिवर साहब का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये झांसी के थे और 50s से लेकर 90s तक उन्होंने बहुत अमेजिंग गाने लिखे हैं। इनका पहला जो एक गाना बहुत हिट हुआ था वो था 1951 की फिल्म मल्हार का, याद है आपको वो गाना, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। और यहाँ पर इंदिवर साहब का ही लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।

0: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।